रतन कुमार लोई तुम्बम अदमन तरुण ताबी रिवर्सी आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल दगिनी आकाशवाणी इम्फाल हाउसिंग असी नौ मगी चैनल असी दा संदोक जगत बतारुम सिंह निंगशिंजरी नया की मतुम पुंतरु कमीनी तरा लहुसिंगु की वाफम दतान जगनी पांबी द सल्फर अमदी कॉपर तकेलम रंजिता चनु दगी मैत इसे थमजरी पुंतरु कमीनी तरा मंगा पुंतरु मकाय मदम इसे की कुदोल दा माइबम माइमु सिंह कक्षिंग दाबम लवंगिनी देवी अमदी पुख्रम चंद्र कुमार दगी मथंग मथंग लंधुक जगनी नसे युग पुंतरेत खंजल नाचुन थमजरी मदम इसे थौरानी साबी देवी मदि कामगुदगी खुबाग से लंधुक जगनी पुंतरेत कमिनी नीफू जंत्र संगीत की कुदोल द थमजरी तो नंबम संदीप दगी वायलिन पुंतरेत कमिनी यांखे मंगा

मथंगता भी रसी कक्षिंग ताबम लवंगिनी देवी ने सकपा श्यामानंद वाइन सेरिंग बीशे कुंदम लईरांग लईनुंगशी असुन सहोरी

정신 못 나이보다 다즈게야 호크리 속터리 타와이 학장쇼 나이 호이 담비우 레이진 낭나 눈시 못 바우터 부타님도나

साधिकान दशमी दशा ताखिवनी संगते चैतन्य प्रभु राधा मख वो खरे असी हाय न कपल।

थोरानी साबी देवी में दिखांग बने सक पा खुबाग इसे इताबी रे आगस पानी उफा हाउसिक ले इसरे जंत्र संगीत की खुदोल दा तो नंबम संदीप नखोंबा वायलिन

आकाश पानी फल हौसगे कि पुनी पालतारी दिल्ली दिगी रिलेदा समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तमदी सिलोंग दिगी रिलेदा अवांग नुपुक लंदोंगी पाव मतंग मतंग इन्हें फंग बीरगनी।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
3: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
4: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
2: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिमवई भारत की 4 दिन की

0: आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली विमनई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
5: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Sri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both Houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
8: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificial intelligence-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant. This development comes at a time when the credibility of the examination process has been under intense public scrutiny. The NTA's move appears aimed at curbing attempts to misuse the re-evaluation or scrutiny mechanism through forged documents created with advanced digital tools. Officials indicated that the agency has already identified several suspicious cases and is taking firm steps to verify authenticity before proceeding with any rechecking requests. The advisory underscores the growing challenge posed by artificial intelligence in academic and administrative processes. With easy access to AI image generation tools, some individuals appear to be attempting to fabricate evidence to challenge exam results. The NTA has made it clear that such practices will not be tolerated and will invite strict legal action. Manik Sharma, Akashwani News, Delhi.
7: The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10 Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker Results Portal at the URL results.digilocker.gov.in. In line with the recommendations of the National Education Policy, the CBSE had introduced two board examinations for Class 10 from this year. The main board examination was conducted from 17th February to 11th March, followed by the second board examination from 15th May to 21st May this year. The CBSE said that the overall pass percentage after combining the results of the main and second board examinations of this year was 96.78%. In Jammu and Kashmir, Sri Amarnath Yatra will remain suspended from both the Pahalgam and the Baltal routes from today as a precautionary measure in view of the adverse weather forecast. The decision was taken following the India Meteorological Department's forecast of inclement weather over the next few days to ensure the safety and well-being of pilgrims. The official said no onward movement of Yatris will be allowed from the Baltal and Nunwan Chandanwadi base camps until further orders. Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board has also temporarily suspended the Vaishno Devi Yatra in view of the inclement weather advisory issued by the IMD. According to an official update issued by the Shrine Board, the decision has been made as a precautionary measure to ensure the safety and well-being of pilgrims. The authorities are continuously monitoring the weather situation and the Yatra will resume once conditions are considered safe for pilgrims. The IMD has warned of a fresh spell of heavy rainfall over parts of Jammu and Kashmir, with the possibility of flash floods, landslides and waterlogging in vulnerable areas. Administration has advised residents to avoid unnecessary travel and to stay away from water bodies. The India Meteorological Department has issued red and orange alerts for heavy to extremely heavy rainfall across Uttarakhand today. Continuous rainfall has been reported in several parts of the state, leading to a rise in the water levels of major rivers. More from our correspondent.
2: The IMD has issued a red alert for extremely heavy rainfall in Nainital, Champawat and Udham Singh Nagar district today. An orange alert has also been issued for heavy to very heavy rainfall in Dehradun, Tehri, Pauri, Haridwar, Uttarkashi, Rudraprayag and Bageshwar districts. Thunderstorm accompanied by lightning and intense spell of rain are also likely in several areas. Authorities have also been instructed to keep machinery and other essential resources ready along the landslide prone routes. Meanwhile, State Disaster Management Secretary Vinod Kumar Suman has appealed to residents, Chardham pilgrims and tourists to follow weather advisories and to avoid unnecessary travel. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
7: With the southwest monsoon remaining active over Himachal Pradesh, intermittent rainfall continued across most parts of the state since last night. Meteorological Center in Shimla has issued orange and red alerts for heavy rainfall in various districts till 21st July and has advised people to remain vigilant. A report.
3: The Meteorological Center Shimla has issued a yellow alert for today in seven districts, Una, Bilaspur, Hamirpur, Chamba, Kullu, Solan and Sirmaur, while an orange alert has been issued for Kangra, Mandi and Shimla districts. The department has also issued a red alert for heavy to very heavy rainfall on 20th July in Chamba, Sirmaur, Mandi and Kangra districts and on 21st July in Chamba, Sirmaur, Kullu, Mandi and Kangra districts. In view of the weather warnings, the state government has advised people to stay away from rivers, streams and landslide prone areas and to avoid unnecessary travel. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
7: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, who is on a four-day official visit to India, will meet Vice President C.P. Radhakrishnan in New Delhi today. During the meeting, both leaders will review the entire spectrum of India-Tanzania relations and explore new avenues for future cooperation. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will also call on the visiting dignitary today. The United States military has launched new airstrikes against Iran to punish the Iranian Revolutionary Guard for an attack in Jordan that killed two American service members, left one missing, and four requiring hospitalization. U.S. Central Command said the strikes were designed to further degrade Iran's ability to restrict the traffic of oil tankers through the Strait of Hormuz. The waterway accounted for roughly 20% of global oil supplies before the war. The new strikes came after the U.S. military announced its first troop deaths from direct Iranian fire since the opening days of the war, following a drone and missile attack on a base in Jordan on Friday. As part of our series People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we speak to R. Madhavan, an acclaimed actor and director who has been honored with the prestigious Padma Shri.
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए बनाना चाहिए वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए
7: To listen to this conversation, tune into 100.1 Akashvani Gold this morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. In sports news, in FIFA World Cup, England secured the bronze medal after defeating France 6-4 in a thrilling third-place match at Miami Stadium last night. Bukayo Saka became the second England player to score a hat-trick in a World Cup knockout match after Sir Geoff Hurst in the 1966 final. It was the highest-scoring World Cup game since Hungary beat El Salvador 10-1 in 1982 and the 10 goals were the most in a third-place match. On the other hand, Kylian Mbappe surpassed Lionel Messi's career World Cup scoring record and took the lead in the Golden Boot race with a pair of second-half goals. Mbappe reached 22 career goals, one more than Messi. The star striker finished this World Cup with 10 goals, two ahead of Messi in the race for the Golden Boot, which is awarded to the tournament's top scorer. The stage is all set as Argentina and Spain will face each other in the finals at New York New Jersey Stadium tonight. The match will begin at 12:30 a.m. as per Indian Standard Time. Kolkata, affectionately called the football capital of India, is in the grip of World Cup final fever as fans gear up for the high-octane final between Argentina and Spain. More from our correspondent.
9: Kolkata will stay awake tonight, so will the whole of Bengal. The FIFA World Cup final may be taking place thousands of miles away in New Jersey, but its excitement has reached every home in the state. Neighborhoods have been decked out in blue and white, and Lionel Messi jerseys are everywhere. The West Bengal Sports Department has arranged public screenings of the final at Nandan and the Akhtara open-air stage in Kolkata, besides venues across several districts. Giant screens have also come up at neighborhood clubs, housing complexes and multiplexes. Shandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
7: Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta has announced that restaurants, cafes and other eligible establishments across the city will be allowed to remain open till 4 a.m. tomorrow. In women's wrestling, Indian wrestler Kajal clinched the gold medal in the women's 76-kilogram category at the Budapest ranking tournament in Hungary yesterday. Facing diamond precious Guilford of the USA in a gripping gold medal clash, the young Indian wrestler exhibited immense tactical composure under pressure. India added two more silver medals to their haul through strong campaigns in the 53-kilogram and 57-kilogram weight divisions. In the 53-kilogram championship final, Indian wrestler Antim Panghal settled for silver after conceding her gold medal bout against Sweden's Emma Malmgren due to an injury. The series deciding third ODI between India and England will be played today at Lord's in London. The match will start at 3:30 p.m. Indian time. All-rounder Washington Sundar has been ruled out with a right hamstring injury sustained during the second ODI match in Cardiff. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mushtaba.
10: Thank you, Naresh. The news about India becoming the third country in the world with private orbital launch capability figures prominently on the front pages of newspapers this morning. India's maiden private orbital rocket mission takes off, writes Hindustan Times. India's private space era takes off with Mission Agaman, notes Sunday Pioneer. 72nd National Film Awards, Article 370 wins Best Film, is a lead headline in the Sunday Statesman. Two U.S. military personnel killed as Iran ramps up retaliatory hits on neighbors is a top headline in the Times of India. Iran warns U.S. of unforgettable lessons, says Sunday Pioneer. In its editorial titled, Ordinary Life is Passé, Our Curated Images Are Glowing Perfection, We All Pay a Cost, the Indian Express writes that if beauty has become homogenized, so too has the visual record of what it means to live a good life. The paper writes that the point is not to celebrate collapse or to sneer at beauty, effort or pleasure. It is to be more honest about the price of perfection and more suspicious of the images that ask us to admire it. Under the caption, Never Mind Bastille, India has stormed Paris Haute Couture Week, the Economic Times reports that Paris is no longer an impossible summit, but a destination Indian fashion can repeatedly aspire to while sustaining a presence there. And finally, under the headline, Final Face-Off, the Sunday Tribune carries pictures of Argentina's Messi and Spain's Yamal as the two nations vie for the world football crown tonight. And with that, it's back to you, Naresh.
7: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of Parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Sri Amarnathji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third-place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

0: 남기 세인원도 산업의 원인이 하.
1: 나 띠다.
0: 남기 세인원도 산업의 원인이 하.
1: 아이고다.
0: 남기 이사주기다.

0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो, लेडीज की थोड़ा नहीं कना भी रिपीट। हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो ताबी ब्रो,
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो ताबी ब्रा,
1: हेलो

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग। तारा नोक्सेरी कना उबिरबनो?
1: सार खनजे न्याम तापना चाहिए सार खितांग भोलुम कैनो तो बुझिरा
0: ताबीब्रा ताबीरब्रा
1: और नुंग जुकान हम जु बताए ताए सार यामना सार तापना चाहब
0: होय होय ताफी ओंग सी। हेलो लेडीज गी थोरम सिदा करी करम वफम सिंग पोखत पिनिंग बा
1: हाँ
0: मिंग
1: सार आई कैनो ने खुराई दगी रोमावती ने सार सार वो लाम नहीं कहीं खुने जरी नौ जरी सार
0: थागचरी दो मुसु नो लुक्चरी करम बा वफम सिंग पोखत पिनिंग बा ताफी ओंग
1: आ सार अकोई की रेडियो से अत की मत के कोई थवा याऊ न ताजे ये बा हाउ बुदे की लोई भाव
0: होय होय
1: अ दुदा अकोई की आ वरांग अकोई की कैनो से द सांगाई द मु इसे खंजन बा नो मकान बस न तब द मु कंगला द संग छिल ग इसे खंज जे कि तंग खज ब वाट के द न सम ए खंज ब सा ताबी ये सिंग दी नि ला कया कया की नाकुंग यो हन बिरि बनी तारी ब खिन दी याम न मय छेंग न खंज ब मसी त हन निंग द ब अदु खिन इसे खन बि रक ब मतम द इसे फिल्म द की मानुंग दो अछेंग ब खंग ग इसे अहो वा द की सैछ ब जे खंग ग खन बि रक ओ दि फा ब दे ख गि मिन दे से केन द सली बनी फोनिंग प्रोग्राम जे सि द इसे अहो बुदंग हाई बि रे अदो खै थी द तारि ब सार न तर ग मे दाम होय द दु कि मति अवा ब सुमा योक ने यार ग दि फिल्म म मिन छेंग न सैछ ब इसे अहो ब जे ओर ज नि म फम द छिजु बाय छेंग छेंग द हाई बि रक न माइन जु सार गि म तेंग ल ओर ग पोर ज नि म फम द नो तरि अदो ब लो ने न ख गि ने ति खक ग दि थाम बि ब प्रोग्राम अ कि मति था वांग थांग ल ग सार हु ने थाम बि ब छि द फोन था वो अगर निपाना नि अखोई ही ऑप्शन दिया अगर गाने पूरा तो हाइजीन भी अपा अंदेगी असु चाऊ ना अखोई ही थंबीरी बा कहीं वो जे लोनाई जरा बा अखोई ही डांग लगा मचू जे सुधा अमक तो मचू संजन जरा को बुमनी मचीली आ रही है अतो कुन पार फोन इसे ही खंडन में समझ माने नहीं पोर का ऑप्शन ये कोई आ रही है ना ไอ้เวซีมาเอ็กเชียงน่ะคือเยดิสครับไปก็อยู่ในสาวในทางกันไปเลยทางกันที่เวซีมาเอ็กเชียงน่ะครั้งวีระเนี่ยบอกเขาบอกว่าสิ่งอะเขาบอกว่าแล้วสิ่งการตัวนี้ภาพจะต้องสลักอาชีพมาผู้ปั่นแต่บางทีมองดูก็สมัยจะต้องสินบีระก็สิ่งที่ต้องสินบีระกันอยู่อะดูว่าคุยปวดรำที่จะมาสักทีนะก็คนในบางทีคนในบีระกันอยู่ไอ้ชายามทางจะหายใจด้วยไอ้มาเทียบเทียบกันมาตั้งจะชาไอ้เกี่ยนท่านจะเกี่ยชาโน้ตเลย
0: คุยคุยยามน้อยใจยามฟ้าจะบอกขั้นลนี่นุพีสิงกิดมักตาทั้มบาดูกุมบาเฮลโลเลดิสกีทอร์มซิดานุพีขักตมักสรุปยานิงบางีอพามฟงดกพีบันนี้ดูกุมแม่ยามนุพานุพีปุ่นนะสรุปยามินบีอาบะโปรแกรมสิงทั้มบีรีเวสิดาดูมักนุพาสิงสุสรุปยาบิวเฮบีรักปนี้ดูกุมลอยนันาคุยกีใช้ขันบะมาทั้มดาใช้สักปะใช้เรียงบะใช้รังบะนัทรักนะฟิล์มกีมามิงซิเมกซิงนะให้ยานิงบางีอพามบะฟงดกพีบันนี้ยามน้อยใจตรงหันตรงหันบะว่าฟงแก่มาทั้มบีรังบะphone tok birak paro ma pati bu thagachari sei matang khudol tam jari me ampun ta minasi aivam syamna sakpe sei matang khudol tam jage thangjam korana sei ring pe sei ni ta minasi

0: हेलो
1: हो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो लेडीज
1: नमो
0: की थोरमनी कना ओइ बिरबनो
1: नमो चांद दे नि ने ना
0: मिंग
1: नसी सामा तम दे ना दे तम दे र
0: होय होय मिंग मिंग दोंग तंग हाबियो खितंग ताहौ दरे
1: ने ना नमो चांद दे
0: होय होय मे मा थागचरी करमबो वफम सिंग बुगत बिनिंग बता पियो
1: या वाला वाला नसी जे इतने नहीं तो वाला जिसे समझ जिन था तभी अम्मा मकाई मतुंग देना चीज़ खाने में को
0: होय होय
1: अम्मा ये देना तभी खाने में अम्मा ना इसे समझ जिसे आते वो लोग है ना ले जरे का बने किसे असी चीज़ देना वो खाब देना था ये चीज़ दे इन्हें उठाई में चीज़ देता ना मोटा
0: होय होय अयुक्त ताबी बदुरा
1: अयुक्त इतना चल रहा है ना
0: ओ होय
1: तभी
0: अयुक्त थोड़ा मनी रूपमा ताबी की
1: मेरे तारे में मिसिंग है जिस चीज़ का यार मैं बिचार कर रहा हूँ
0: होय होय
1: आई ना अजीब बात है देखो मैं देखता हूँ ऐसा तो क्या नहीं बना इसे ना रोने लगा मामा ने इन्हें तो आंखें कंधे वो कॉलर हो गया ना पूरे का नहीं बना लग जाएगा मेरे को तो
0: होय लाइव फोर देना फोन फंग देना इसे ही ताव फंग करेंगे सी
1: अच्छी जगह उतर गई है देखो
0: होय होय कस्बानी इम्फाल बु नुंसी बिबा हाइनिंगाई लेतन थागे चेरी ओ होय नुपी सिंग मरी लेने बा ngasi हेलो लेडीज गी थोरम सिदा फोन फंग बगी हराव बसिगी मथक त टोंग हान ब करम ब वफम सिंग थमिनिंग ब लेटाक पियो होय होय यम होय होय होय होय यम नुगाई जरिया दोंगी थागर वही सिंग सुंगसोई सोई देना थोदाम निरुपमा मसामक तसु तम जगे फोन तो बिरक पा थागे चरी सही सही मखाता ना दमक तामी नखिसी थागे चरी

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हेलो लेडीज की थोरम दा तराम नोक्सरी कना हुई बीरे बनो।
1: ओ वो इमा से इमा नि को तही हम दा मया से रे ओ अन नसी ना हा बने
0: होय होय मिंग मिंग तक दा पियो हान बा फंग जाबाय आम नोय।
1: ओ को सुवाई दिगी ने ओ बी को ए
0: अंगो बी होय तराम नोक्सरी
1: ओ
0: करम बा वफम सिंग पुखत पिनिंग बता पियो।
1: ओ मिये बाई से हाई हे को मिये बिजु ने से से अम पे दे अम सी दे नि को
0: होय होय
1: लू लई गो मते खजे निछिला हमसिता नला लई नब पामे अरे ये अहम लमन ए फलक सुले लू लत जीवा अद अहम रे रजा ये अहम जी मसा मे मे जी ना सुनु सु सु सु का माई दे या ने खई
0: होय होय हलमन सिंह बु मचा मामा वैब सिंह हल वैरक्लब मतम दा खरे हे न सेक्शन न लू न तो हनिंग बगे अफाम फोंगदोक पिबनी
1: अदु अपा मनी कई काही कई कई सुगे
0: होय होय
1: से ही वरलान दिबा अहन दिने से जे ओवे सु ए अहन मीना
0: होय
1: ए जिमे हे जगर जने काई द बिगी मोंग द ए कमरे ये न तवना गा तवने दी अहन रे गन अम छिन छिन तो बि जे याम ओवे दे गो
0: होय होय मधुमक्सु इमा होय गी पुंसी द थोक तबो ओइसनु कना गुंबा सिंग अदु गुंबा इमोंग मनुंग नुवाई तबो सिंग लेर मग सु ngasi गी थोरम सि ताबि रगा होय होय होय होय
1: एही याम गल अबनी इमा जे सि द कोइ छवान हि द दुकान ल साम ति सि खम ने ने ngasi गी ने ताबे जे पे सि आम सितरे कई नु ये हंगेरी गम लई दुखल ल दुबो मतम लेन ब नि का वरी तुम खान लगे न तव को नि दे नि वो
0: होय होय लाइव फॉर द नाइ माना फोन सी फंग बी रे दो गई मुंग मनुंग गी हलमन सिंग बु मचा मम मोय बसिंग न
1: अदु तंग सिंग दे गेन ता बुनि नो
0: होय होय मचा मम मोय बसिंग न लु न चाना नुसी न तो हनि बगे पाम बनि
1: थंग दब
0: होय ग सी अहान ब फंग बसि दे मा थामोय द करी फावी गे
1: या मुंगाय ता जि गवारी खान दब या मुंगाय ए कोस वाई दे गेन मेरिना दे जो अजु दे सो वा मुंगा सले को इता सिन सो कले
0: ओ होय होय मेरिना ओइनाम
1: ओ
0: या नुगाय
1: होय
0: होय होय या नुगाय
1: अकस
0: अकस्बा नि फल गे थोरम सिद सरुग बिरप सरुग बिरप थाग चरि मा सा इमोशन न सुलु न तौबा ओइ बिरो हाइबो फम सि थम जगे
1: अदु याम अदु तौबिबो जन
0: होय होय
1: अदु तौबिरि अदु थौदि तौबिरि
0: फनि फनि थाग चरि मा सरुग बिरप
1: फन न तल
0: होय सुर तरंगी सैसक पसिंग न सक पैसे मतंग कुरोल तम जगे नरेंद्र चिंगांगबम ना सैरांगब इसैनी सैरेंगब इसैनी तामिनसी।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो लेडीज की थोड़म से द तर आम नोक्सरी कना हुई बीरा
1: हेलो
0: बनो। हेलो कना हुई बीरा बनो। हेलो ताबी ब्रा होई होई कना हुई बीरा बनो थक पियो मिंग लाइफम अमुक तंग खंजे गे
1: हेलो
0: हेलो हेलो ताबी ब्रा
1: ताबे
0: होय होय मिंग लेफम दो मुतंग हान हाइबियो हेलो ताबी ब्रा

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो लेडीज की थोरम सीधा ताराम नौ सिरी हेलो कना उबीर बनो
1: सही हम तो खन जगह था उन्हें
0: दी सही खनबा नुमित नते नुपी सिंह मरी लेने वो अफम सिंह फोकट पियो कना उबीर बनो तक पियो
1: ऐ वो ना रमा नहीं ना तो रुझान
0: होय होय सही खनबा नुमित सुलाई है यंग नि कनो दा नि थोका बनो मिता खनबीरो
1: हाँ
0: मिंग लाइफम तो उंतंग खंजगे

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो लेडीज द तरह नोक्सरी कनाव बीर बनो
1: हेलो
0: हेलो तकपी
1: हो
0: कनाव बीर बनो
1: सबो मन तेरा सबो मेरे पेगी नमाइ केन बिधु
0: विधु तरह नोक्सरी
1: हाँ
0: ऐसी हेलो लेडीज की थोरम
1: नो
0: से द क्रम वफम सिंह
1: वो आम मक्का दा इकाई खुन्ना उपरी
0: थकचरी
1: हाँ
0: तरह नोक्सरी क्रम वफम सिंह पुखनिंग बा पुखटपिनिंग बा तकपी हो
1: अदो इमादी सही जो खर गया मैं
0: होय होय
1: अदो
0: होय होय
1: आया ना हाइजन बाबू का निंबदी वर्ल्ड की फिफा
0: होय होय फुटबॉल से
1: फुटबॉल जे जिकी फाइनेंस एजेंटिना का स्पेन का कांग कांग तो नहीं था ना
0: होय होय
1: अदुदा इमाना पामिदे अखोई केंगोंगो लोइनमक इंडियाजी ओइनको इंडियाजी ओइना अखोई अखोई केनोसे थानारोइ जिंगे
0: होय होय
1: मथंगी नेक्स्टा अमुक्तं याव मन्नानानाबा फनन नचिया हाइबके इमाना थामजनबा
0: होय होय मथंगी वर्ल्ड कप द मथंगी लाकदोरी ब वर्ल्ड कप
1: ओ
0: द तकपी
1: नेक्स्टा
0: सेमा
1: लाकदोइबा तेही
0: होय होय
1: मंगा
0: सही मरी 2030
1: नो
0: द इंग लिसिंग अनि कुंत्रा द होय होय करिगुम बल आइबक फदना भारत ना अखोई वर्ल्ड कप की फुटबॉल की क्वालिफाई होब ममगदी मणिपुर की सू तोान तोान अखोई सानरो खरदीम यौरपये आशा से मणिपुर की मियामदा मणिपुर की मियाम की थमोदनी लाइबक फदना भारतना इंडियाना अदुगुंबा अखोई फुटबॉल की वर्ल्ड कप से यौब वफम से थमजगे इमा थगचरी इसई मतन खुदोल तमजगे रु ब्रागगी सैसक्पसिंग सकप इसई सैयंगना वी जयंत कुमार शर्मा।

आकाशवाणी इंफाल हौजी नौ तरनी तारे नसीगी कंगला चैनल की अनीसुब थवरम परें संदुप हुजरी संदुक सरीबा मीडियम वेट मीटर सहम निफु दसमी अमा किलो हर्स सनीपान मरफुनी थोय थवरम परें यहूबदा हुजी मणिपुरी दा नुमी उंबगी पाव ताबिरसी

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है।

0: संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991295681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टानें गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
2: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की तीन दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली ओएमआर शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार फौजी भाइयों, ये है आकाशवाणी फाल केंद्र का कंगला चैनल मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए प्रसारित हमारा दैनिक कार्यक्रम।

फौज भाई, आज रविवार है और हम लेकर आए हैं एक ही रूप। तो आज हम एक ही रूप में आपको सुनवा रहे हैं सन 1998 की फिल्म जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म के गीत, इस फिल्म को दीपक सरीन द्वारा निर्देशित और हनी ईरानी द्वारा लिखी गई है। तो सुनते हैं पहला गीत, लता मंगेशकर और कुमार सानू के युगल स्वर में।

फौजी भाई जब प्यार किसी से होता है इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाए थे सलमान खान, ट्विंकल खन्ना, जॉनी लीवर, फरीदा जलाल, सैयद जाफरी, हिमानी शिवपुरी, अनुपम खेर, नम्रता शिरोडकर और चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में आदित्य नारायण ने। अब सुनते हैं अगला गीत।

फौज भाई, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कंगला चैनल से एक ही रूप में जब प्यार किसी से होता है फिल्म के गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण के युगल स्वर में ये गीत।

फौजी भाई, जब प्यार किसी से होता है फिल्म के सारे गाने टिप्स बैनर्स के तले रिलीज हुई थी। इस फिल्म के गीतों के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा था जतिन ललित ने। अब सुनते हैं अगला गीत कुमार सानू की आवाज़ में।

फौज भाई, अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वर में ये गीत। कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में ये गीत।

फौजीभा, इसी गीत के साथ आज का एक ही रूप अब यहीं समाप्त होता है। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

जेसु ख्रिस्ता चु जेरिको कुपी लाई लुमचुन अगलुता नहीं हि अचुन कैदोंपी पुई मिनिम सा जकाई चुन मुते दिंग अगुन

खुकपि मथुरकु तो जगचु नही अखैस निख्रम चक्र लकाशवाणी इम्फाल चु चुप्र हुदा पोंग हेफेर पदेकुचे माओ मई कुटुगदा हे नुआ चितिले चक्र कपिदु नुक्र लय उमु कई फुमो।

आकाशवाणी इंफाल चो विपाउ नारुम सा रिमेकअप्टर कमचाई अपाउ बिंग आया नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वी खंगुरुम टीम आखना थुई गहाय कचांग दी नागा रिचुम नाउ मी थरोगली तुखुई लगा साथत मी कहाय लिक जंग मी खनीली तुखुई लिशित हायरा क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन नजमिक शो खनी थंगुई वांग क्विक का सेमिनार आया हाउ पोखाइर आचि उचंग संगाइर इम्फाल जिरीबाम शोंगफुली आचुईवांग कॉन्वॉय मलेटद ओटकफुंग कारी इम्फाल मुंगजंगथुवा कला अखम जिमिक्शो वियाइना पार्लियामेंट पुई मॉनसून सेशन पंपोखावरा अरमे साग हाय पाउ नारमसा आया नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मणिपुर टीम कला सीआरपीएफ विखंगरुम टीम आखना अचोन कचांग नागा रुचुम नाउ मिथरोगली तुखुई लगा साथत मी कहा चिली ngसुन लगा

ताबिक्री माधवी फिल्म असिदगी उदित नारायणगी नाइटों खोंजेल दैसे इसगी सेरेंगबा एल बंकर शर्मा सैरांगबा सगोल सेम तिजेंद्रनी मणिपुर फिल्म इसेगी अरुब खुदोल दमुक्ताबीरसी दाकफम फिल्म असिदगी पुष्परानीगी नाइटों खोंजेल दनी इसेगी मयिक्सी अमत मानदे वाहीसु खेने थमोगी पाउदमसु अदम खेनेरंगनी हैन खनजे दाकफम फिल्म गी सेसी पुष्परानीगी नाइटों खोंजेल दनी सेसीगी सैरेंगबना बिमोल फिबौ सैरांगबा अफाउनी सेसना करीबु हाइरिबा मिकुखरदन सेजे तामिनरगा खंगमिनसी

ஹைமாய்ப்பியமா சர்க்கனோ தசுமா ஹை பியுதனா சஞ்சாவுனங்க மன் தூங்கில பூன சாவுங்க மச்சி காதி ஹைபிதோ ஹே தோய்தா பலே மாத்துவான் குங்கோயிரசிதோ பேமா சனா ஹல்லியங்கசிதோ আর সুমনা মামম লাংলেন মাসা ধুইবি বিয়ে মম পলে মামা তোন মানাই সেনু ইয়েত গ কই গ থাউ গলে বিয়ে মনে আই দসন কাই দ লয় রই লাগ পদো আই বিয়ে মই বিয়ে মর সনা হন হজেই দা

0: ꯃꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯅ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯣꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯃꯨꯡꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯏꯅꯣ? ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ
1: ꯀꯤꯂꯣ ꯇꯔꯥ ꯂꯧꯕꯗ ꯀꯤꯂꯣ ꯑꯃ
0: ꯀꯤꯂꯣ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯤ.
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯅ ꯋꯥꯅ ꯊꯥꯖꯔꯦ ꯊꯥ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯤꯁꯤ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯤ.
0: ꯍꯣꯏ,
1: ꯊꯥ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯆꯪꯅ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯦꯅꯦ. ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯒ ꯃꯍꯤꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯂꯣꯟꯕꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯃꯊꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯂꯂꯣꯟꯕꯤꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯦꯞꯄ꯭ꯔ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ?
0: ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯚꯦꯂꯨ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ, ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯤ. ꯀꯣꯕꯤ ꯊꯥꯔꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯕꯤꯁꯤ ꯌꯣꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦ ꯀꯣꯕꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯤ? ꯑꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯔꯣꯛ ꯆꯠꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯪꯉꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯀꯤꯂꯣꯗ 30 ꯌꯣꯜꯂꯤ, 90 ꯌꯣꯜꯂꯤ, ꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 50 ꯍꯟꯗꯔꯦ. ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯣꯜꯂꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯟꯗꯕ, ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯗꯕ, ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ. ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯃꯃꯜ ꯑꯃꯗ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯂꯂꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯜꯂꯦꯕ. ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯣꯟꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯃꯜꯗꯨ ꯍꯣꯡꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯤ, ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯃꯣꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯝꯐꯥꯠꯇꯦ, ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ.
1: ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ,
0: ꯍꯣꯏ,
1: ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯦ. ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯊꯥꯗꯕꯤꯔꯤꯕ ꯉꯥ ꯃꯈꯜꯁꯦ, ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯉꯥ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ, ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯉꯥ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯗꯔꯤꯁꯦ?
0: ꯉꯥꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯁ ꯀꯥꯞ, ꯀꯃꯜ ꯀꯥꯞ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯜꯚꯔ, ꯔꯧ, ꯃꯤꯔꯒꯜ, ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯦ.
1: ꯊꯥꯗꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯄꯣꯟ ꯉꯥ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ?
0: ꯏꯁꯄꯣꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥ ꯀꯥꯞꯄꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯀꯥꯞꯄꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯄꯣꯟꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯤ. ꯀꯨꯝꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯏꯁꯄꯣꯟ 10 ꯁꯦꯝꯖꯔꯦ, ꯉꯥꯁꯨ ꯐꯅ ꯆꯥꯎꯔꯦ. ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯦ
1: ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗ ꯁꯦꯝꯃꯤꯅꯦꯕ?
0: ꯑꯧ.
1: ꯑꯗ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ?
0: ꯑꯆꯧꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯤꯂꯣ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯦ.
1: ꯅꯥꯄꯤ ꯆꯥꯕꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ? ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤꯖꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ, ꯀꯤꯂꯣ ꯑꯁꯨꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯥ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯁꯨꯛ ꯄꯤꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯣ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤꯖꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ?
0: ꯄꯤꯖꯕꯁꯤ ꯉꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯁ ꯀꯞꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ 10 ꯆꯥꯏꯅ ꯑꯀꯪꯉꯩꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯁꯤꯗꯤ ꯁꯔꯨꯛ 10ꯗꯅꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯡꯂꯦꯞ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯕꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯃꯜꯂꯒꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯥꯈꯠꯄꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯉꯥꯒꯤ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯅꯣꯡꯗ ꯁꯖꯤꯛ ꯀꯣꯛꯇꯣꯡ 3 ꯆꯥꯔꯦ 4 ꯆꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯅ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯛꯏ ꯐꯥꯜꯂꯒ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯧ ꯃꯤꯔꯒꯜꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯏꯀꯨꯞ ꯑꯏꯔꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯜ ꯇꯛꯆꯕ ꯈꯣꯠꯆꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯖꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ.
1: ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯖꯕꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ?
0: ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯖꯗ꯭ꯔꯤ. ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯖꯕ ꯉꯥꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯇꯤ ꯂꯩ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯉꯥꯁꯦ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯁꯤꯟꯗꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥ
1: ꯍꯥꯎꯕ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ
0: ꯍꯥꯎꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ, ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯀꯟꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯃꯄꯥꯟꯂꯝꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤꯖꯕꯁꯤꯅ. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜꯂꯤ ꯄꯤꯖꯕ ꯊꯥꯎꯊꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯖꯕ ꯉꯥꯁꯤꯅ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯇꯥꯁꯜꯂꯤ ꯀꯟꯁꯜꯂꯤ ꯆꯥꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅꯝꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ.
1: ꯉꯥꯁꯤ ꯊꯥꯗꯔꯦ, ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯥꯁꯦ ꯐꯥꯔꯒ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯆꯍꯤꯃꯗ ꯉꯥ ꯀꯌꯥꯔꯛꯀꯨꯝꯕ ꯐꯥꯕꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ?
0: ꯉꯥ ꯏꯁꯄꯣꯟꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯩ ꯆꯥꯔ ꯊꯝꯃꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯤ ꯅꯪ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯀꯝꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯍꯦꯟꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯆꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯜꯂ ꯑꯣꯜꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ. ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏ ꯆꯥꯔ ꯊꯥꯗꯒꯦ ꯈꯣꯠꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 4-5 ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯔꯦ, 5 ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯏ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯜꯂꯤ ꯃꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯆꯥꯁꯤꯗ ꯌꯥꯅ ꯌꯥꯅ
1: ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ
0: ꯂꯧꯅꯩ.
1: ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯅ ꯊꯥ 4-5-6 ꯁꯨꯔꯒ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯂꯞ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤ?
0: ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯇꯧꯏ, ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯏ.
1: ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯥꯄꯤ ꯆꯥꯕꯤꯗ ꯁꯖꯤꯛꯁꯤ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯛꯄ?
0: ꯅꯥꯄꯤ ꯆꯥꯕꯤꯁꯦ ꯅꯥꯄꯤ ꯆꯥꯕꯤꯅ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯊꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯉꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ
1: ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯦ,
0: ꯆꯥꯏꯌꯦꯕ.
1: ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ब्रॉयलर लोयबगी मतांग जुपन बिग्रे ब्रॉयलर से कयाम नो लोयबिरिस
0: ब्रॉयलर से जिजी मक्ति याम लोयब गमदे आइ सानी मक्त होन जरी सेवा गमदबनी ना ब्रॉयलर सानी सानी से दम अमुक सिंगुबा अमुक थोकीबा दम रोटेशन नाइन दम होन जरी
1: अत ब्रॉयलर लोयब से सिगे सेवा तबसि याम सेक्शन बगी मौंगमा तंगाइ फदबगी पाउसता जाबा
0: होय
1: सिगे योकबगी माइगे कमाइ तोय माइगे रेयरिंग सिस्टम हाइतार
0: माजे yena woring edik moina vaccine ka pa ko pa jai ko na dam angang sing tawra ka phal le ko yanga sing kina aduga e ing ma saba nung chit chit pa
1: yena woring e have see tha parak parak
0: pa hata am parak pa dam vaccine jana ka pa hai adu dagi zum khar ler kan ma gi
1: vaccine ji karam vaccine ka pi chena
0: vaccine ji angang sing na ta unai moin vaccine da ka pu har ga dam ai dia du vaccine ka dai ka
1: ma ka ngai na
0: har pa se moin angang sing na dam tawra dam dai ing chel du tri moin ta jera san na aduga माग मतंजाक आदेकी करी करी संतोक संजिन दुगुंबा इसिंग मासिंग जे इसिंग जे वांट्स मोदी पिता की इसिंग पोखरी की पिता पोखरी की पिता का दुगुंबा
1: दोंग जेन तो पिया
0: यादे ब तो लोग तुम बगी लाइन आसिंग मोदी हम कल ले
1: ओ आ मसे था के हम ते योले कम तो इनकम के हम लाइक मई
0: था हम दा आ जिंग योले जे पालेसिन तारा हम लेंबा तारे ने पालेंबा
1: जे नि मुले बिसे
0: दा सिद्र गदी हेन लेमे सिगर गद मार के सियाना यूरोप द दिसेन मांगे आ लगे कोई mawanda koi lok thung mina ma gi seba ta buyadre mo je ta long na lok thung galle
1: meeting
0: long na re
1: marketing system de kamai te misi san amuk da one time dam loi phar ga yon tokra masi masi yon bra kamai
0: machin machin kana gu ma local gi kari ma chaning gi har ga na marak marak ta moina yelam ta piwani da piwa ha adu ma pi gare na tra ga di pun na pun adum tha doi
1: marketing de problem le te ba
0: te do kan le te ma gi de
1: isazu ozawai ram bade gi ozawai waina lo sum gi thok pai khat pi raga adai matung go thabuk de gi pothar matung farm gi thabuk tung mai puna na thok ji pu bi ri lo shal pu sida inkhal agli ba na sing sida kari kari wa phom de tham bi ning ya
0: ai na maya ma khu yu ji ji le ri ba khu ki हाम नंग दबलो सिंगुरिबा केलिनाउ जिंगमा इन हाइजेनिंग बदे आइकोइना मतम चाना तबक जे थावा यान होनरगदि छेंदोंग जे मछाना लाई आदु होना द्रगदि उजिक आइगि थानारि फार्म जे दा यंगबियु आइकोइ गे जानसो थानारि फार्म जे छोंग छोंग जे लगना पि तरो तरो लै जे मा गाइ गथे थानारि बनि सिग फिगर जे होना द्रगदि सिग मुजे दु
1: मारे
0: अरे मदद ताय पप होनरगदि अमांग मलाइते होना बियु thawa yauna koi angdang chaukat mine si haiba message ma pam ta wiri be chile nau jingda ai masimati pijeni

0: ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8ꯀ ꯃꯤꯅꯤꯠ 95 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯇ꯭ꯌꯗꯤꯠꯇ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯃꯂꯥꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅꯤ
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नए झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: ꯏꯕꯥꯅꯤ
7: ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯎꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯕ
6: ꯅꯕꯥꯅꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦꯗꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯗꯤ ꯅꯕꯥꯅꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯅꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯅꯦ
7: ꯑꯗꯨꯏ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ
8: ꯃꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ
7: ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯆꯦꯛꯀꯞꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯗꯕꯅꯤ
6: ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯇꯦꯁꯇꯣ ꯇꯧꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ
7: ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯦꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯦꯁꯀꯤ ꯔꯤꯖꯜꯗꯣ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯦꯗꯁꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯕꯗꯤ ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1097ꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯁꯜꯂꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯆꯠꯂꯒꯦꯀꯣ
9: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯐꯪꯂꯕ ꯍꯩꯉꯥꯡ ꯀꯣꯟꯊꯥ ꯑꯍꯜꯂꯨꯞ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯕꯤꯍꯥꯁꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯁꯟ 2026-27ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ BMLT ꯀꯣꯔꯁꯀꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ
10: ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯁꯤꯠ ꯈꯔꯈꯛ ꯂꯧꯖꯒꯅꯤ ꯇꯣꯄꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯂꯩꯖꯒꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯡꯕ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ
9: ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯔꯗ ꯌꯔ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ NABLA ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯁ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛꯁꯇ ꯍꯦꯟ ꯖꯣꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯐꯪꯍꯟꯖꯒꯅꯤ
10: IDP ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 10% ꯁꯤꯠ ꯈꯥꯛꯆꯔꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯐꯤꯁꯨ ꯂꯧꯖꯔꯣꯏ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯐꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯀꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ
9: ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ 9863-65859 ꯗ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ
11: EE maintenance to PHED na thadorokpa warol amagi matungena PHED gi ising seasonary ba miyamna July kontra ma thoi lesing ani kontaruk paubagi manungda all bill arrears amasung meter gi dues concern office ta lak laga verified tauraga thidok pinabaning singjeri July kontra ma thoi gi matungda di thidok haudaba consumer sing gi details mayamadu online portal da verified taubada kudong chanaba upload tauragani hainasu khangalagli
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।

0: welfare of differently abled person manipur lingkha ki bagi tara hum doisuba kumon thoronga mari lenena ngasi nomgi ba lemna lying bagi camp ama Imphal West jila gi Senjam Chirang mai lai kai da leba Senjam Chirang youth club ki community hall da pang thokre tangkak naina chatharpa outreach program asigi manung chana ngasi miwe kya lemna lying ki JMA Students Organization Manipurna Rajya Sarkar da athu matamda Tamenglong Toksem headquarters lambi sembi nam taksil lagli loop asigi President Running Lung Newman Hai Toksem Subdivision da Lady Bamiam Lambi Asi Patabana Kudong Sadaba Kaya Mayok Nahale Lambi Asi Mioi Kyagi Hingnabagi Maruiba Lambi Ama Oribani Nongju Thagi Matamda Lambi Asi Asuki Matik Patabana Ana Ek Yaropada Satok Sasin Tobuda Kudong Sadaba Kaya Mayok Nari Library and Information Center Kaksing the Sinduna English Amasung Mathematics Oiba Sangdam Nabada Makok Matang Takraba Singda Manayen Tubuki Torma Mangasi Pang Tokre Kaksing Poksupa Lekai de Labor Library Asigi Auditorium the Pang Topa Manayan Topogi Toromda Class 3 Degi Tien Pawgi Makok Matang Takraba Mahiro Singda Mana Kusin Naki Nauna Officer Oina Sanglak Laba Assam Regiment Gi Officer Singh Asi Churachampur Jila de Labor Assam Rifles Headquarters the Orientation Program Gi Saru Amoina Chatki Makoina War Memorial de Ikai Kumnaba Ulaba Matung Ex Serviceman Amadi Makok Tongba Official Singa Unaduna Wari Saki Maragasta Assam Rifles na tongan tongan ba loop sangstan amadi kulgi kulakpa singa nodna wari sabagi thabak makha ta na chatari Chandra Khongi Maira Paibi Singh Thobal gi social media influencer Singh Sengmaijing Khunogi ward member Kamongi local youth Singh Maibam Youth Development Club gi Mioi Singh kulgi kulakpa singa unaduna security amadi miangwa lainari ba mari gi matangda wari kya sanaki hari Akashvani Imphal gi pau tabiri Sangsaki nongju mipam ayeng degi hauragani. Matang tagi tara humdui pawbo chatagadaba mipam masida puna sitting tara mapan legani. Mipam masida ayan kaya putoktuna kana bagaluena pas tauna bohonagani. Sangsaki nongju mipam ningtina pang tok pada mateng pangbina ba kendrigi parliamentary affairs mantri Kiran Rijijuna birodi dol singda apil tauri. Naidilida sangsaki mipangi mangwena rasniti dol puna mangki oiba mipam ama pangtholoduna tungda paumising da wangangmada siri Rijijuna rasniti dol singda apil toroduna hai nongju mipam asi ningthina aswe angam yauduna pangthokna bohonabada makhoi gi chaurba thokdang lai mang hai sangsat haibasi mipung kudimakini aduna sarkarna tongan tongan ba business amadi bill sing puthogadori mipam asi ningthina mapung phana pangthokpana lebak asi gi yaifaba oigadori bani siri Rijijuna hai
1: संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगी आज सरकार ने ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक बुलाया है हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को अनुरोध करते हैं ये जो मानसून सत्र है इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें विशेष करके जो ये मानसून सत्र है कई इम्पोर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं इसमें सब सहयोग करें अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें हंगामा ना करें और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे सहयोग करेंगे
0: संसद की नुंजु मिफम हयेंदगी हौगोदरीबा असिगी मांगवेनना सरकार न कौदन राजनीति दोल पुनमकी ओबा मिफम अमा नई दिल्ली द पांगथोकरे ngaksel mantri rajnath singh sababadi oiduna pangthokki ba mifam aduda parliamentary affairs mantri kiran rijiju amsung rajya sabha gi luchingba jp nadana singba saruyaki mifam hek horopaga birodi dol singdi mapanda thoki Pawmik Singh da Wangangmada Trinamool Congress ki MP Mahua Moitra na hai Congress Samajwadi Party DMK JMM Trinamool Congress amasung Aam Aadmi Party yauna Birodi Dol Singh na meeting adubu yaningdaba phongdoktuna mapanda thoknaki adu moinamak yaningdaba phongdoklaba tungda Congress ki MP Jairam Ramesh CPM gi Luchingba John Bitras JMM gi Mahua Maji amasung Trinamool Congress ki MP Mahua Moitra yauna Birodi Sadasya Singh amuk ana meeting adu yauki Haujik sanabagi pau mangsa tabam premananda degi.
2: FIFA World Cup lisinga ni kundro ke final match ngasi ahing nongyai matung pungkhai chatpada mamangi champion Argentina ga Spain ga New York ki New Jersey Stadium da sanaragani. Argentina ing lisinga mo ga chamapal humputara Nepal lisinga mo ga chamapal marifutaruk amasung mamangi champion ni aduga lising amaga chamapal kuntra Inglisinga Moga Champal, Marifutara, Amasung, Inglisinga Nitara Marida Runners Up Taki. Spain na Inglisinga Nitara da World Cup Amurak Laukre. Kap Asik Aumsu Mafongi da Makhauki ba Ahingnungai Matungda Saniki ba Master, England na France po Panjal Taruk Marida Maitiwa Piduna, Senzengi Takama Laukre. हौजिक फाउबगी ओइना फ्रान्स की किलियन एम्बापे ना पुन्न पांजल तरा चंदुना चथेरबो वर्ल्ड कप असिदा ख्वारीगी यामना पांजल चनब गंबा सनरोय ओइदुना गोल्डन बूट की मना फंगबगी लंबीदा मंगजिल थाना लैरी अर्जेंटीना की लियोनेल मेसी ना पांजल निपान चंदुना अनिशुबा ख्वारीगी यामना पांजल चनब गंबा सनरोय ओइरी भारत की बैडमिंटन सनरोय पी वी सिंधु ना जपान ओपन टाइटल लौरपद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना थागत फोंदोरकली वारोल अमदा प्रधानमंत्री ना हाय मांगना टूर्नामेंट असिदा माय पाक्पा असिना लेबाक असिगी नाहा कयादा पुंगनिंग थौगतपगा लोइनना तुंगदा लाकदाबा चाकदानबा कयादा सरुक यानिंगबगी इथिल पीरगनी राजेश
0: थागचरी प्रेमानंदा अरुबेदा मरुबे पाव क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की मतांग चथरप सेमिनार गासी इम्फाल लोइसिंगरे फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल फाइनल मैच की येंगदुना राज्य सरकार ने हयेंग राज्य से लेब मई लोइसंग छुट्टी थादोकरे मणिपुरी फिल्म की सकनारब डायरेक्टर ओकेन अमाकसंग लेकिद्रे राज्यपाल यौन लुसीम क्या अवाब फोंदरोले मेट डिपार्टमेंट मणिपुर की जिला खरद हयेंग नों कूगनी हरी लेब के अत मफम खरद रेड अलर्ट लौथोकरे सिटिंग तरामापन लेगद संसद की नोजू मिफम हयेंगदगी हौरगनी मिफम मथंग थागी तराहुमदोइबा वोचथगनी पाउ लोइजरे।

ये मोम लाले जा थोई भी लेत्र बदी मा थंखन

0: आकाशवाणी है। लोकसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा, संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मॉनसून सत्र, जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
2: देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारे कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन के पार्टियां हैं, वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन अब उन लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी है, अपनी पार्टियां बना ली है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है, उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड है कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम उस तरह के लेजिस्लेशन को, एक कानून के पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है, वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है, जो पेश होगा सरकार की तरफ से। और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए अपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करे और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है। और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, ऐसे ऐसे बिल्कुल ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नाकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में इनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी ही नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इसलिए उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहां 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, न के परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करेंगे।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
3: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि एथनॉल की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है। नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, नीट हमारे लिए इशू है, बेरोजगारी हमारे लिए इशू है, और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या, जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबल नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो। आपने देखा होगा विकास की जो बात करें, कितना भ्रष्टाचार क्या लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं, और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, MP MLA को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है, और SIR का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है, वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बना कर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों को रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, MSP के बारे इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और हम ये समझते हैं, और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं, तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: CPIM से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मानसून सत्र में उठाने वाली है।
4: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त की है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की वो तमाम वापिस लें। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गांव पे नमक छिड़कने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
1: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
5: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे ये लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की, 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने FIR रजिस्टर की। एक फर्जी FIR, एक फर्जी SIT का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10

0: भरवाना चाहे, E20 भरवाना चाहे, उसे ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा, जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा, ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे। यही होता है और यही करते रहेंगे।
1: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि, आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
2: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देशहित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की गई और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं, उनके जैसे अभी आपके स्पोक पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, बट उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे, और जो लोग हैं थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरी तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे खुचे लोग वो भी नकारे जाएंगे। लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे, आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं। उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है, जो भी इसमें चेंजेस के बाद है, वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
1: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
3: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दिया, वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था वो राजनीति है? क्या हम अगर ईरान के साथ, अगर आप जाते हो इजराइल जाते हो, ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें, वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले है, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए, तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा, जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कह रहा, सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है। और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है। और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि FIR नहीं और SIT आपने गठन कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है, पूरा देश जो है, उन पे आशा भरी निगाहों से एक ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को यह बोलने की आवश्यकता नहीं है एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो एक है चोरी से पास करो यह सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है चोरी की सरकार भी है जो लोगों को चोरी करती है मतलब एमपी चोरी करती है एमएलए चोरी करती है सत्ता चोरी करती है यह और यह हमें नसीहत देती है रही बात जिस संविधान की 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है तो यह एक नैतिकता हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है नैतिकता एक शब्द होते हैं हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना लें ये कौन क्या क्या गारंटी लेंगे ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है
1: अमरा राम जी जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है इस पर आप क्या कहेंगे और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा
4: बिल्कुल असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं रचनात्मक क्यों नहीं दें हम तो बिल्कुल जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था निर्यात होता था उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था वो जीरो अमेरिका का सामान आने पे होगा तो देश की बर्बाद होगा तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष ये जिम्मेदारी है प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया सर्वसम्मत कर दिया तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है मतलब इसको बुनाने का महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया ये शर्तें जोड़ने की कहां जरूरत है वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है जी
1: अनमोल जी एक बार फिर आपके पास आते हैं जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे आप युवा हैं क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा
0: देखिए सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे उस समय बिल पास नहीं होने दिया फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए 33 क्यों आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए लेकिन ये नहीं चाहते ये महिला विरोधी पार्टी है इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में दूसरी बात भाई हमारी जो है मेजोरिटी नहीं रही हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है ईडी पार्टी कर रही है चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है ईडी पार्टी सरकार कर रही है ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है ये लोकतंत्र के हत्यारे ये संविधान के हत्यारे जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता ये तो किसी के सगे नहीं है विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका ये इस बात को भली भांति जानते हैं 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग।
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, चूंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले

0: सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है?
1: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है, उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे, और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखे हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसके वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या उस डिसरप्शन होता है, और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी ना कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पे असर आ जाता है। बट ये सब टेम्पररी है, परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था, और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है, और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर फोकस है, और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखे जो रिजर्व्स है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए क्या, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं, और इसलिए हम वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं, और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है, और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं, और लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
0: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है, और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
2: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें हैं, डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात करें, जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयूज थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहां पे वर्ल्ड रैंकिंग, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहां पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहां पे हो। मैं आज भी मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष ही बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक भाष हो, सार्थक बातें हो, और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए, एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला, आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
0: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
3: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो,

0: उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए, और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा। भाई प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, नीट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं उस पर जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मानसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे, और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आपका क्या संदेश होगा?
2: देखिए, मैं जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं देश हित में काम करते हैं, और उनके लोग जो है उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो, और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा देश का फायदा है तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडी ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए है, ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनको जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
1: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
5: हाउसिंग तावी ग्रे डेलीडेगी रिलेदा पार्लियामेंट मॉनसून सेशन लिसिंगनी कुंतरुकी मांगोइनना हिंदी अमदी इंग्राजी द खनने नबगी थौरम थौरम संदोक्तुने तहान जरीबासी आगसबानी इंफाल गे नुमिदांगी थौरम परेंगनी हाउसिंग अमु पुदुने लाखजरी आदोमना खनबिरकपा ताबिनिंगबा मणिपुरी फिल्मिसै मथंग मथंग ओइना पोस्ट कार्ड अमदी एसएमएस के खुतान खनबिरकपा इसै सिंगनी मिकु खरदांगाई मिनसी।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 10:31 और 9 सेकेंड, और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार का। और हर सिंगार की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि इश्क की कुछ दास्तानें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दो दिलों तक महदूद नहीं रहती, उनका जिक्र ज़माने की हर महफिल में होने लगता है। और जब मोहब्बत के चर्चे सुरों में ढल जाएं, तो वो नगमा बरसों तक दिलों पर राज करता है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमे से आज के सफर का आगाज करेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और वो नगमा है एक बेहद खूबसूरत फिल्म 1968 में आई ब्रह्मचारी से। इस गीत से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी मशहूर है। संगीत विद्वान और फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यन के अनुसार यह धुन पहले किसी दूसरी फिल्म के लिए बनाई गई थी, लेकिन वहाँ उससे मंजूरी नहीं मिली और उसके बाद वो मायूस होकर वहाँ से निकल गए। मायूस जयकिशन ने मुंबई के मशहूर होटल गलार्ड में यह धुन शमी कपूर साहब को सुनाई। धुन सुनते ही शमी कपूर इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने निर्देशक भप्पी सोनी से इसे फिल्म ब्रह्मचारी में शामिल करने की गुजारिश कर दी। और फिर क्या था, यही धुन फिल्म के सबसे मकबूल और यादगार गीतों में शुमार हो गई। यह और दिलचस्प बात, बेहद खूबसूरत और एक और बहुत ही खूबसूरत बात इस फिल्म से जुड़ी हुई, इस नगमे से जुड़ी हुई, वो है कि इस गीत में जो महिला की आवाज़ है वो आवाज़ है सुमन कल्याणपुर की, लेकिन उसकी आवाज़, उनकी आवाज़ की मधुरता और बनावट इतनी हद तक लता जी से मिलती थी कि ज़्यादातर लोग इसे उन्हीं की आवाज़ समझ बैठे थे। लेकिन बाद में जब पता चला कि यह आवाज़ सुमन कल्याणपुर की है, तब जाकर लोगों को यकीन हुआ कि वो बेहद खूबसूरत सिंगर भी हैं। ब्रह्मचारी फिल्म का वही नगमा बेहद खूबसूरत आवाज़ों में मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने।

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। ब्रह्मचारी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में। दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत की अपनी एक अलग जबान होती है, कभी निगाहों से बयां होती है तो कभी एक मासूम से सवाल से छुप जी आती है। और जब दिल पूछ बैठे, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, तो जवाब सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि मुस्कराहटों में भी मिलता है। उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा, यानी वही नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, 1967 की सुपरहिट फिल्म मिलन से। और मिलन फिल्म का यह सदाबहार नगमा इस मधुर युग गलगीत को अपनी जादुई आवाज से अमर बनाया है मुकेश साहब ने और लता जी ने, जिसे पर्दे पर सुनील दत्त और नूतन की सादगी भरी केमिस्ट्री को इस गीत ने और भी खूबसूरत बना दिया। इसके बेहद जज्बाती बोल लिखे आनंद बख्शी साहब ने और सुरों की मनमोहक चादर बुनी हिंदी सिनेमा की मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की। दिलचस्प बात यह है कि मिलन के गीतों ने गीतकार आनंद बख्शी के फिल्मी सफर को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस फिल्म के गीत सावन का महीना, पवन करे शोर, राम करे ऐसा हो जाए और बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, इन गीतों ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गीतकारों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जोड़ी ने मधुर संगीत को भी खूब सराहा गया और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का अपना दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। और जब एक ओर लता मंगेशकर जी की कोमल आवाज नूतन के भावों को सजा रही थी, तो दूसरी ओर मुकेश साहब की सादगी और दर्द भरी गायकी सुनील दत्त के किरदार में जान डाल रही थी। मोहब्बत की उस मासूम रिवायत में आइए हम लौट चलते हैं, जहां इजहार में शरारत थी, जवाब में हया थी और हर सुर में दिल की धड़कन सुनाई देती थी। तो आइए उसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं हर सिंगार के इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

0: बोल गोरी बोल, तेरा कौन पिया। मिलन फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा मुकेश साहब और लता मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में और हर सिंगार के इस महफिल को यहाँ पर बस कुछ पलों के लिए रोकते हैं। उसके बाद जब लौट कर आएँ तो फिर और भी बहुत सारी बातें होंगी। बेहद खूबसूरत सदाबहार नगमों के साथ हम हाजिर रहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 10:48 और 10 सेकेंड। महफिल सजी है हर सिंगार की, जिसमें सदाबहार गीतों के साथ हम हाजिर हैं। कुछ रिश्ते शोर नहीं करते, इंतज़ार से मुकम्मल होते हैं, और कुछ वादे लफ्ज़ों से नहीं एक खामोश एहसास से भी निभाए जाते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत वादा है फिल्म चितचोर के एक बेहद खूबसूरत नगमे में। यह फिल्म आई थी 1976 में और इस बेहद खूबसूरत युगल गीत को अपनी रूहानी आवाज़ों से अमर बनाया है यशोदा साहब और हेमलता जी ने, और इसके बेहद जज्बाती बोल लिखे और इसकी मधुर धुन भी तैयार की बहुमुखी प्रतिभा के धनी संगीतकार रविंद्र जैन साहब ने। उन्होंने ही इस गीत को लिखा भी और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा भी। बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही शख्स गीतकार और संगीतकार दोनों रूपों में दिल जीत ले, और रविंद्र जैन ने इस गीत के साथ यही कमाल कर दिखाया है। इस गीत और पूरी फिल्म से जुड़ी महाराष्ट्र की खूबसूरत कहानी भी है। इस फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशन पंचगनी और महाबलेश्वर की वादियों में लगभग 25 दिनों तक हुई। फिल्म के कई यादगार दृश्य और लोकप्रिय गीत, जिनमें गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा भी शामिल हैं, पंचगनी के ही एक पुराने बंगले में फिल्माए गए थे, जिसे फिल्म में जरीना वहाब के घर के रूप में दिखाया गया। कुछ दृश्य अलीबाग के पास बसे शांत किहिम गांव में ही भी शूट किए गए, जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती आज भी फिल्म के हर फ्रेम में महसूस की जा सकती है। संगीत प्रेमियों के लिए या संगीत के चाहने वालों के लिए एक और दिलचस्प बात यह है कि गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा की धुन राग धनी पर आधारित है, जिसे कर्नाटक संगीत में शुद्ध धन्यासी कहा जाता है। इसी गीत के लिए केजे यशोदास साहब को 1976 का सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। यही फिल्म उनके शानदार बॉलीवुड सफर की शुरुआत भी बनी और उनकी रूह को छू लेने वाली आवाज ने हिंदी फिल्म संगीत में एक अलग पहचान बना ली। तो आइए इसी फिल्म चितचोर का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यशोदा साहब और हेमलता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

जब दीप जले आना। चितचोर फिल्म का यह बेहद खूबसूरत नगमा यशोदास साहब और हेमलता जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि कई बार दिल की पूरी दास्तान लफ्जों से नहीं सिर्फ आंखों से बयां हो जाती है। एक नज़र मुस्कुरा दे तो हजारों बातें कह जाती हैं और एक खामोशी उम्र भर का रिश्ता बन जाती है। दोस्तों, ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं 1978 की खूबसूरत फिल्म घर से। आवाजें हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा है। इस गीत को राहुल बर्मन साहब ने और इसे लिखा है हम सब के चहेते नगमा निगार गुलजार साहब ने।

0: किशोर कुमार साहब और लता जी की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फ़िरोज़ को अब दीजिए हर सिंगार से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और इसके बाद आप सुनेंगे मार्केट मंत्र का पुनः प्रसारण। और ठीक 11:40 पर मैं रहूँगा आपके साथ लेकर गीत मेरे मन में। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund related queries. But do remember, we do not address stock or company specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: थैंक यू.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: Foreign portfolio investors infuse nearly 12,000 crore rupees into Indian equities so far in July. In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week, and domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week.
1: Videshi portfolio niveshakon ne July mein ab tak bhartiya share bazar mein lagbhag 12,000 crore rupaye ka nivesh kiya. Sarafa bazar mein lagatar dusre hafte sone aur chandi ki kimaton mein giravat. और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और वैश्विक गतिविधियों पर.
0: And listeners, before we go any further in the program, may we once again remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले खबरों पर नज़र डालते हैं सरबजीत. देखें आज क्या हाल रहा है इस हफ्ते FPI का. लगातार चार महीने की बिकवाली का दबाव बनाए रखने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI ने जुलाई में लिवाली की है. इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाज़ार में उन्होंने 11,897 करोड़ रुपए का निवेश किया है. सेमीकंडक्टर के वैश्विक व्यापार में कमजोरी से FPIs अब फिर से उभरते हुए बाजारों का रुख कर रहे हैं. देश के बेहतर आर्थिक संकेतकों और तिमाही आमदनी की अच्छी खबरों से विदेशी निवेशकों में उत्साह है. लेकिन अगर पिछले सप्ताह के आंकड़ों पर गौर करें तो FPIs ने भारतीय शेयरों से 3,260 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं. सरकार की टैक्स नीति में बदलाव के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगातार दिलचस्पी दिखाई है. जुलाई में अब तक उन्होंने FAR के जरिए 7,492 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 4,480 करोड़ रुपए का निवेश किया है.
0: और गुरुग्राम से कांता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. कांता जी, स्वागत है आपका. सवाल पूछे. जी,
3: मैं ये पूछना चाहती हूँ मैडम.
1: जी, सवाल पूछे. जी
3: जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो PPF होता है ना, PPF में निवेश करना बैंक में कितना सुरक्षित है? बैंक जैसे पोस्ट ऑफिस में तो पैसा मरता नहीं कभी, और बैंक में था कोई पता नहीं होता, तो मैंने बैंक में PPF खोला, वो कितना सुरक्षित है?
1: PPF में पैसा कितना सुरक्षित है?
2: कांता जी, PPF क्योंकि एक गवर्नमेंट की स्कीम है और ये फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और ये काफ़ी लंबे 15 साल के लिए आप अपना पैसा यहाँ डालते हैं. यहाँ पर भी एक तरीके की कंपाउंडिंग होती है कि आप जो डालते हैं उस पर आपको एक इंटरेस्ट मिलता है और फिर वो इंटरेस्ट जुड़ के आपके उस टोटल अमाउंट पर आपको ये एक तरीके का ब्याज है जो मिलता रहता है, तो इसकी सुरक्षा जितनी भी स्कीम्स एग्जिस्ट करती है उनसे काफ़ी ऊपर है। तो आप बिल्कुल इसमें अगर निवेश कर रहे हैं तो बिना इस चिंता के आप बिल्कुल अपना निवेश जारी रख सकते हैं।
1: जी स्नेहा, जब पीपीएफ की बात आती है तो कई बार लोग पूछते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से कि पीपीएफ कितना शेयर रखें, और ख़ासकर जब पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें इसके फ़ायदे दिखते थे, क्या आप बदले हुए हालात में इसका क्या सीन है, क्या रखना चाहिए?
2: एक बात तो ये है कि अगर आप पहले के समय में रख रहे थे तो क्योंकि एक लंबे टाइम के लॉक इन के साथ आता है
1: तो वो
2: पैसे
1: तो रहेगा ही,
2: रहेंगे ही उसमें। बट देखना इस प्रकार से चाहिए कि हमें इक्विटी और डेट में अपनी एलोकेशन कितनी रखनी है। अगर आप डेट में लंबे समय के लिए कोई एलोकेशन रखना चाह रहे हैं तो पीपीएफ एक्चुअली एक काफ़ी अच्छा विकल्प हो जाता है, क्योंकि उसमें आप ये जो एक सेफ्टी की बात अभी हम कांता जी से डिस्कस कर रहे थे वो भी एक लेवल अप रहती है। और क्योंकि जितना इंटरेस्ट इसमें आज आपको मिल रहा है ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है, जो कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में लोग चाह रहे होते हैं कि मिल जाए। और फिर इंडिया हैज़ लॉन्ग बीन अ फिक्स डिपॉजिट वाली एक मार्केट रही है, तो गारंटी से हमें काफ़ी प्यार है, तो ये वो हमें ऑफर करती है। तो हम अगर डेट एलोकेशन लंबे समय के लिए रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसमें रख सकते हैं।
1: जी अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से, अमित स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: हेलो मार्केट, दिस इज अमित। सो माय क्वेश्चन रिलेटेड लाइक आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एज एन अर्निंग एज अ सैलरी इनकम एंड माय मदर इज आल्सो गेटिंग पेंशन। So I have transferred my mutual funds to my mother, and when I'm filing my income tax return in a new regime, both for myself and my mother, so it is showing of rupees around 10 lakhs and under the off-market transaction credit in EIS and KIS statements. So I want to know whether I have to pay any tax. Or how the tax calculation will be done while filing this return, for me and for my mother, I've transferred the mutual funds.
1: मुझे लगता है स्नेहा कि ये म्यूचुअल फंड से ज्यादा इनकम टैक्स का सवाल है, और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इस पर बेहतर सलाह ले पाएंगे।
0: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम हैदराबाद। सौरभ जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: Good evening, Market Mantra.
0: Good evening.
5: My question is regarding mutual fund rebalancing. I just want to ask that let's say on 1st of August, I have to rebalance for the yearly rebalancing. So in one of my, asset, that is the mid-cap or small-cap, I have now more than my stipulated percentage. So for the next year, should I immediately sell off that thing, or I should reduce my SIP for the next year in that mid cap or small cap? Thank you.
2: Right. So Saurav, it's great actually that you're looking at, you're giving a holistic view to your portfolio annually. So kudos on that. On the aspect regarding your mid and small cap have turned heavier as per your targeted allocation, what you can also do is at this point, let's say if you're looking at rebalancing and you have some debt allocation in your portfolio, maybe you can increase that a bit and eventually it should settle out. Because if your funds are doing reasonably well, they have been, let's say, generating healthy returns for you, then there is no point of selling it just for the rebalancing aspect. How the other way of looking at it would be increasing, let's say, your debt allocation to some extent. And that should be helpful.
1: जी अगले कॉलर के पास चले सरबजीत।
0: जी चेन्नई काशीनाथ जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
6: गुड इवनिंग मैडम।
0: गुड इवनिंग।
6: मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पास एक स्मॉल कैप है टाटा स्मॉल कैप, और दो फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेम फ्लेक्सी कैप। इस तीनों फंड के बारे में क्या अच्छा है, इस पे बने रहना चाहिए? हर फंड में 2-2 हजार जा रहा है, ये क्या अच्छा है, इसकी अच्छा जानकारी चाहिए, धन्यवाद।
2: तो जो आपने पोर्टफोलियो बताया कि आप दो स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं और एक फ्लेक्सी कैप में, इस लिहाज से मुझे लगता है कि आपका स्मॉल कैप एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, सिंस आप इक्वल अमाउंट इन तीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो का एक थोड़ा छोटा हिस्सा रहे, बहुत ज़्यादा ओवर पार ना कर ले, क्योंकि होता क्या है लंबे समय में ये देखा गया है कि बीच बीच में स्मॉल कैप जब मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप में जो फॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ऐसे करें कि अगर आप स्मॉल कैप में जो एलोकेशन कर रहे हैं इसके साथ साथ आप एक और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर लें, ताकि जो आपका एक पोर्टफोलियो का होलिस्टिक व्यू है वो थोड़ा बैलेंस हो पाए। बस इतना इंश्योर करना कि जब वो उतार चढ़ाव हो रहा है स्मॉल कैप में तब आप डरे नहीं, आप अपनी SIPs को कंटिन्यूड रखें, क्योंकि वही लंबे समय में आपको एक ही स्ट्रैटेजी होती है जो आपको आपका रिटर्न, आपका कमाई का मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकती है। तो आप देखिए अगर आप एक और फ्लेक्सी कैप में आपके पास सरप्लस है तो SIP स्टार्ट कर लीजिए।
1: जी, दिल्ली से आकाश जुड़ गए हैं। आकाश स्वागत है आपका, सवाल पूछें। लगता है आकाश से हमारा संपर्क टूट गया है। अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं सरबजीत।
0: यस, आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष जी सवाल पूछें।
7: हाँ नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार
7: मैडम, अभी आप बता रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर अभी इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो मैं ये जानना चाहता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ उनको इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया है क्या, जैसे डेप्ट फंड में उनका टैक्स रिबेट का दिया था, ऐसा ही कोई इक्विटी फंड में भी दिया है? और दूसरा ये है कि वो कौन सी स्कीम में इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर, ये कुछ पता चल सकता है?
1: वो जिस खबर की बात कर रहे हैं मैं वो साफ कर दूं कि वो इक्विटी फंड नहीं है, उन्होंने भारत के शेयर बाज़ार में निवेश किया है, और डेट फंड में भी नहीं है, वो डेट मार्केट में है, वो भारत के पूंजी बाज़ार का ही हिस्सा है। तो मुझे लगता है ये जवाब काफ़ी होगा हमारे श्रोता के लिए। जी अगले कॉलर के पास चले हम।
0: यस, लेट्स कनेक्ट विद आकाश फ्रॉम दिल्ली।
7: हेलो
1: जी आकाश।
7: मुझे दो बातें पूछनी, एक तो ये पूछना है कि जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में हम ब्रांच में जाते हैं तो वो अपने एजेंट के द्वारा हमें कुछ चीजें बताते हैं, तो वहाँ कंफ्यूजन रहता है, वो अपनी ही कंपनियों के बारे में ज्यादा हमें राय देंगे, और क्योंकि हम लोग की FD है तो हम लोग एक राय ये लेना चाहूँगा FD के बारे में कि हम एक साल के बाद मैच्योरिटी के बाद ही लें तो ज़्यादा बेनिफिट है, या हम हर महीने या तीन महीने बाद अपना से बनाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप मैच्योरिटी के बाद लेंगे तो आपको एक साल के बाद कंपाउंड ब्याज मिलेगा, कंपाउंड ब्याज तो वो समझे ना चक्रवर्ती ब्याज या इसके ऊपर ब्याज, और ये साथ में ये सारे एक्सपर्ट आते हैं, आप लोग कहीं आपका ऑफिस भी होता है जहां आप लोग आम आदमी फ्यूचर फंड में जाना चाहता है, आपसे राय लेना चाहता है, क्योंकि आप आकाशवाणी में आते हैं तो आपका विश्वास ज्यादा बना रहता है। धन्यवाद
2: जी। आकाश जी आपकी वॉइस में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, जितना मैं समझ पाई हूँ आप कहना चाह रहे हैं जब आप बैंक में म्यूचुअल फंड्स बाय करने जाते हैं तो वो आपको अपनी ही कंपनी के फंड्स सजेस्ट।
1: जी ऐसा अक्सर होता है।
2: हाँ बिल्कुल ऐसा अक्सर होता है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च जो हम कर सकते हैं वो करके जानी चाहिए। जब आपको आप आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होता है, जब आप इतना समझ पाते हैं कि अगर आपको 5 साल से ज़्यादा के लिए करना है तो आप इक्विटी फंड्स देखना चाहेंगे, तो आप उनमें चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा जो जिसका खर्चा कम है, जिसने मार्केट के उतार चढ़ाव लंबे समय में देखे हुए हैं और उनसे आपको एक हेल्दी रिटर्न जनरेशन रही है, पर लंबे समय में, छोटे समय में नहीं। एक साल में कोई अच्छा बुरा कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट ही लॉन्ग टर्म एक तरीके के लॉन्ग टर्म जनरेशन वेल्थ जनरेशन के लिए है। अगर आपका गोल 3 साल से कम के लिए है तो हम डेट फंड्स देखेंगे, अगर आप पहली दफ़ा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम हाइब्रिड फंड्स देखेंगे। इतना भी अगर हम समझ के जाते हैं तो जब कोई हमें गलत चीज़ बेच रहा होता है या जो हम नहीं चाहते हैं वो बेच रहा होता है, वी कैन ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चंस। जब हम सवाल करते हैं तो फिर हमें जवाब सामने वाला जिस तरीके से दे रहा होता है उसमें हम एक इन्वॉल्वमेंट रह पाती है, और क्योंकि सामने वाला ये समझता है कि वो काफ़ी नॉलेजेबल है, वो आपको एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट अगर आप खुद से कुछ फंड्स का चुनाव करके जाते हैं और आप उन्हें बोलें कि आपको इन्हीं में करना है, तो मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप अपना स्टैंड रखिए और आप फिर इन्वेस्ट करिए, और अगर बैंक के थ्रू आप नहीं कर पाते हैं तो, और आप अगर मान लीजिए डिजिटली आप काफ़ी सोफेस्टिकेटेड हैं, तो आप AMCs की वेबसाइट पे जाकर, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके फंड का चुनाव कर सकते हैं जो आपको, जिसमें इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपको बेच रहे हैं आप उसी में निवेश कीजिए। दूसरा जो आपने बोला कि FD एक साल की लेनी चाहिए या ज़्यादा की लेनी चाहिए, मेरी समझ में अगर आप इफ़ एट ऑल फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि जो आपका जितने समय का गोल है आप उतने समय के लिए वो वाले टेन्योर की FD लें। क्योंकि होता क्या है कि अगर वो मान लीजिए आपका मैच्योर होता है, वो वापस आता है आप, और उसी समय जिंदगी में कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आ जाता है जहाँ पे आपको लगता है अच्छा यही इस्तेमाल करके अपना वो कंज्यूम कर लेते हैं पैसे, तो मतलब जब मैं सोचती हूँ इन्वेस्टमेंट का तो मुझे लगता है कि गोल के साथ अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं तो एक बेटर वैल्यू मिल पाती है आगे जाकर, और जो इंटरमिटेंटली हम कंज्यूम कर लेते हैं उसका डर खत्म हो जाता है।
1: जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से दिनेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
8: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
1: जी,
8: मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये है कि म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, फंड कैसा भी परफॉर्म करे फंड मैनेजर को अपने चार्जेस मिल जाते हैं। ऐसा क्या नहीं होना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो मैनेजर को बेटर चार्जेस मिले, और अगर इंडस्ट्री से एवरेज से कम परफॉर्म किया है तो वो कम चार्जेस लेकर बाकी चार्जेस NAV में ऐड कर सके। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में से किसमें इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। थैंक यू
2: जी। दिनेश जी, आपका जो पहला सवाल है ये जब भी मार्केट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती है तब बिल्कुल जो लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनके दिमाग में ये आता है, और हाल फिलहाल में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस की बात करी थी, जिसका बिल्कुल यही माध्यम था कि जब कोई फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो मतलब इन्वेस्टर को उसमें रहने का एक फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर मैनेजमेंट को भी उसका जो प्रोपोर्शन है जो एक एक्सपेंस के तौर पर मिलता है वो उसी रिलेटिवली टू द परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, तो कम ज़्यादा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको मिले। बट इस पर अभी ये बस एक सर्कुलर है, इस पर कुछ और डेवलपमेंट नहीं हुई है। AMCs ने अभी इसको इनेबल नहीं करा है, या फिर इस पर क्या थिंकिंग चल रही है ये सब, मतलब अभी टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा तभी हमें पता चलेगा। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि दिनेश जी, सुना है ये सेबी ने, रेगुलेटर ने, देखते हैं इसके आगे होता क्या है। एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि माना वो एक्सपेंस ले लेते हैं, बट इसकी वजह से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो हम जारी रख रहे हैं उसको पॉज या स्टॉप नहीं करना चाहिए। हमारा नज़रिया ये रहना चाहिए कि अगर कुछ 3 साल तक या फिर मतलब वो परफॉर्मेंस आपको उतना नहीं बेनिफिट दे रही है तो आप बिल्कुल उसमें अपनी SIPs पॉज करके एक दूसरे फंड को देखिए। बट छोटे समय में इस तरीके की थॉट से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे पॉज ना लगाइए। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि गोल्ड ETFs और सिल्वर ETFs में से किसका चुनाव करना चाहिए, तो बेसिकली ये एक तरीके का ऐसा एक्सपोजर है कि आपको मेटल में एक्सपोजर लेना है, समथिंग बियॉन्ड इक्विटी, जो इक्विटी के उतार चढ़ाव के साथ आपको एक तरीके का बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गोल्ड का जितना हिस्ट्री देखी गई है वो इतना ये प्रोवाइड कर पाता है, प्लस गोल्ड ETFs ज़्यादा पुराने हैं और ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल है मार्केट में उनकी, तो आप चुनाव किसी का भी कर सकते हैं। बट गोल्ड की हिस्ट्री क्योंकि ज़्यादा है तो उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, जिसको आप जब आप खरीद बेच करते हैं मार्केट में, तो शायद एक बेटर निवेश वो रह सकता है। बट इंश्योर बस ये करना है कि मेटल में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपोजर 10% से ज़्यादा ना रहे आपके पोर्टफोलियो का।
9: ऑल राइट, आवर नेक्स्ट कॉलर इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। योगेश जी, सवाल पूछें।
10: जी नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल ये है कि ICICI क्या, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि उसके लिक्विड फंड में हमने जो पैकेज आ रहे थे तो उसमें विड्रॉ करने पे 7 डेज के अंदर अगर हम विड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी का चार्जेस था, जबकि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में और शॉर्ट टर्म फंड में आप डालने के अगले दिन भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है सर, जबकि उसका जो मैकाले ड्यूरेशन है वो ज्यादा का है। तो ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड फंड में ज्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए बट उसमें 7 डेज का लॉक इन है?
11: और दूसरा सवाल है कि भारत 20 ETF भारत 20 फंड ऑफ फंड ये क्या है 22 सॉरी भारत 22 फंड ऑफ फंड
2: जी योगेश जी कुछ समय पहले सेबी ने ये नोट करा था कि लिक्विड फंड्स में मतलब एक एग्जिट लोड की काफी जरूरत थी क्योंकि लोग बीच में डाल के जल्दी निकाल रहे थे और लिक्विड फंड एक ऐसा माध्यम है जहां पे जो बड़ी कंपनीज के ट्रेजरीज होते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं इसलिए हम देखते हैं कि हर एक क्वार्टर के एंड में बहुत ज़्यादा पैसा लिक्विड फंड से या तो निकलता है और एक क्वार्टर के बाद निकलता वापस आ जाता है तो ये होता इस वजह से है कि बड़े ट्रेजरी कॉरपोरेट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं अपनी एडवांस टैक्स पेमेंट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो जब वो एक दिन पहले डालते ही निकाल लेते हैं तो एक इम्पैक्ट ऐसा हो जाता है कि उन्होंने तो पैसे निकाल लिए पर उनपे कोई चार्ज नहीं लगा कम समय की इन्वेस्टमेंट के लिए तो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस रखने के लिए सेबी ने ये इंट्रोड्यूस करा था कि 7 दिन के लिए एक बहुत ही मामूली सा एग्जिट लोड लगेगा बट जब ये बड़े अमाउंट पे लगता है तो वहाँ पे वो खर्चा ज़्यादा लगता है और बाकी आपने सही नोटिस करा है कि डेट फंड्स बाकी के डेट फंड्स में ऐसा कोई एग्जिट लोड का स्पेसिफिकली कोई ड्यूरेशन या फिर ऐसा नहीं है कि आपके पास वहाँ अप्लाई होता है जनरली डेट फंड्स में नहीं होता है लिक्विड में ये इंट्रोड्यूस करा गया था स्पेसिफिकली तो बट इन एनी केस हम जब लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना इंश्योर कर सकते हैं कि इतने कम समय के लिए ना करें तो हमारा फ़ायदा रहेगा
1: जी और देखते हैं सोने चांदी का क्या हाल रहा है सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई मजबूत अमरीकी डॉलर ट्रेजरी यील्ड्स में बढ़ोतरी और इस आशंका से निवेशकों का भरोसा डगमगा गया कि अगर पश्चिम एशिया में टकराव बढ़ता है तो अमरीकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाएगा एमसीएक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.8% की गिरावट आई और ये 1,40,906 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 3% गिरकर 2,16,013 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.3% की गिरावट आई और ये $4,018.80 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.4% गिरकर $56.33 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुई
2: मैं योगेश जी को एक ये चीज़ भी बताना चाहूँगी ये जब एग्जिट लोड लगाया गया था उसका एक ये भी रीज़न था टू एनकरेज जो ये कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स मैं आपको बता रही हूँ कि ये ओवरनाइट फंड में लगाएं लिक्विड के बियॉन्ड बिकॉज ओवरनाइट इन एनी केस एक दिन के पेपर में इन्वेस्ट करते हैं जिसके लिए वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं जो कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स हैं तो ये भी एक रीज़न था वहाँ पे
9: ऑल राइट लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम जयपुर जितेंद्र जी सवाल पूछे
12: हाँ

0: मैडम देखिए, मेरा दो सवाल है। जैसे अभी तो वैसे मार्केट डाउन है, तो कोई नया फंड हाउस कोई नया फंड लेके आया है, तो अब तो उसका एंट्री जो है बहुत नीचे लेवल पे रहेगा, तो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? नया फंड हाउस है और नया स्कीम है तो डाउन है मार्केट, पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न है कि मैडम, अब पिछले एक साल से एक सिस्टम निकल गया कि हम अपना यूनिट जो है गिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने अप्लाई किया और मैं ऐसा कर भी पाया, बहुत ईजी था, तो ऐसा क्या डीमैट में भी है क्या?
1: जी जितेंद्र जी, जो आपका पहला सवाल है कि नया फंड आ रहा है, मार्केट डाउन है, नीचे से स्टार्ट होगा, इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जब भी कोई नया फंड आता है तो सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या ये कुछ ऐसा एक्सपोजर दे रहा है जिसमें ए मेरे और पोर्टफोलियो में इसका एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, एज इन इसमें कुछ ऐसी यूनिक बात है टू ऑफर टू यू कि ये आप चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो फिर उससे क्या होगा कि आप कि कोई और वजह देखेंगे ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, कुछ अगर ऐसा थीम आ रहा है जिसमें आपका जो एक बिलीफ होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा एक्सपोजर हो, आपको लगता है कि ये स्टॉक, ये जो थीम है वो आपको आगे जाके बेनिफिट देगा, तो बिल्कुल आप फिर उसमें इन्वेस्ट करिए। ये दो रीजंस अगर आपके इसमें टिक होता है कोई ये जो नया फंड आ रहा है उसका बॉक्स, तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बेझिझक करिए, क्योंकि आप लंबे समय के लिए करेंगे तो जो आपका एंट्री पॉइंट है वो उस तरीके से मैटर नहीं करता। SIPs के थ्रू आप एम करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा लंबे समय में।
2: जी, अगले कॉलर हैं भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: नमस्ते मैडम, नमस्ते मार्केट मद्रा टीम। मैडम मेरा सवाल है, ये करंट सिनेरियो में जब रिटर्न सारे टेपर होते जा रहे हैं इन एक्टिव फंड एंड स्मॉल और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, तो क्या वुड यू एडवाइस फॉर करंट SIP जो हम लोग शुरू कर रहे हैं या जो चल रही है टू स्विच टू एन इंडेक्स फंड, और एक्टिव फंड वुड स्टिल बी अ बेटर बेट फॉर अ लॉन्ग टर्म 5 साल प्लस टेन्योर SIP से 10,000 की या 15,000 की जो भी SIP चल रही है, आपकी एज एन एक्सपर्ट व्हाट वुड बी एडवाइस, एन एक्टिव फंड मैनेज फंड और एन इंडेक्स फंड फॉर लॉन्ग फाइव?
1: सो शंकर, द डिबेट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फंड्स डज नॉट रियली स्टैंड अप ऑन द करंट मार्केट सिनेरियो, इट एक्चुअली इवॉल्व्स ऑन द फैक्ट दैट लेट्स से इफ यू आर समबडी हु इज नॉट ओके विद एक्टिव मैनेजमेंट, और लेट्स से यू डू नॉट बिलीव दैट अ फंड मैनेजर विल बी एबल टू डू जस्टिस टू यू एंड दस द फीस ऑल्सो यू वुड नॉट लाइक टू पे, देन द पैसिव फंड मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स योर डी फैक्टो चॉइस। Other than that, let's say for somebody who does not really have any experience in the market, he or she can simply start with a passive fund. So if you are already invested in either passive or active, I would say this is not really any reason to stop those and move on to a different fund or a different management strategy. The issue being that, of course, in large and mid-cap passives have, especially in large caps, passives have taken over, but there are a few funds who are able to beat the index as well, and if you are investing in those then you might as well continue. Same goes for mid cap, and in small cap passive really has a long way to, you know, beat active management, so there also active works best.
4: Let's ask our next caller from Ghaziabad, Ashu ji, sawal puche.
5: Yeah, very good evening. Actually, I wanted to know the prospects of Invesco Contra Fund and if it is good to invest for Invesco Contra Mutual Funds in the current market situations. The second one is Mirae Large Cap and Mid Cap, what are the prospects? And I have some points in that particular fund, so should I redeem it or should I continue investing?
1: Right. So how I would say, the prospects can never be judged at this point in time. It is always in hindsight that you would get to know about it. How you can look at it is, if you are looking to build the core of your portfolio, of course, Contra fits there. And for the supplementary allocation, a mid-cap or a small-cap allocation fits well. All of these funds have been decent enough to continue your SIP in. In case you need any other kind of exposure, let's say a small cap, a multi cap, it can be included in the portfolio.
4: All right, listeners, let's now take a look at how the markets are expected to show up next week. The domestic markets are expected to take cues from the first quarter corporate earnings results. geopolitical developments, commodity prices, foreign investor activity, progress in monsoon, and currency trends in the upcoming week. Market participants will closely monitor key economic indicators, including core industry data, purchasing managers' index readings, and foreign exchange reserve figures. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week, with three main board IPOs scheduled for listing.
2: आज वक्त इतना ही है स्नेहा कार्यक्रम में आने और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
4: जी धन्यवाद Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors infused nearly 12,000 crore rupees into Indian equities so far in July. In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week. And domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week. That's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
6: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
7: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। नमस्कार, संगीत के इस खूबसूरत महफिल में आपका दिल से इस्तकबाल है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वक्त की गर्द से कभी धुंधले नहीं पड़ते, पीढ़ियां बदल जाती हैं लेकिन उनके सुर, उनके अल्फाज और उनकी खुशबू हमेशा दिलों में बसी रहती हैं। ऐसे ही सदाबहार और गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत गीतों के साथ हम हाजिर हैं गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। मैं हूं आपके साथ फेरोज। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के नगमे के साथ। साल 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार गीत दिए और उन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस खूबसूरत युगल गीत को अपनी सुरीली आवाज़ों से सजाया है मन्ना डे साहब और लता जी ने। गीत के दिल को छू लेने वाले अल्फाज यानी गीत लिखे हैं हसरत जयपुरी साहब ने, जबकि बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा है, कालजयी धुन तैयार किया है शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने। इस गीत की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी है, ना कोई बनावट ना कोई शोर, बस चांदनी रात, दो धड़कते दिल और मोहब्बत का एक मासूम सा पैगाम। यही वजह है कि 7 दशक बाद भी ये गीत अपनी ताजगी और कशिश बरकरार रखे हुए हैं। मन्नाडे की गहराई और लता मंगेशकर की कोमल आवाज़ जब एक साथ मिलती है तो हर अंतरा एक खूबसूरत गुफ्तगु बन जाता है। वहीं संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी की शायरी इस गीत को सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि सुनहरे दौर की एक अनमोल याद बना देते हैं।

फिल्म चोरी चोरी का ये बेहद खूबसूरत नगमा मन्ना डे साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उन चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये वो दौर था जब मोहब्बत की दुनिया में कभी एक नज़र का इंतज़ार होता है तो कभी एक मुस्कुराहट पूरी दास्तान कह जाती हैं, और कभी कभी बस एक पल के लिए कोई अपना चेहरा फेर ले तो दिल बेचैन हो उठता है। इसी नाजुक एहसास को सुरों में पिरोया गया है हमारे अगले सदाबहार नगमे में, और इस सदाबहार नगमे हैं सुनहरे दौर के। इस रोमानी युगल गीत को अपनी जादुई आवाज़ों से अमर बनाया है मुकेश साहब और लता जी ने। गीत के सादगी भरे मगर दिल में उतर जाने वाले अल्फाज लिखे हैं शैलेंद्र ने, और इन्हें मधुर धुनों का जादूगर जादू से सजाया है शंकर जयकिशन साहब की बेहद खूबसूरत जोड़ी ने। यह वो दौर था जब प्रेम का इजहार शोर से नहीं बल्कि निगाहों, मुस्कुराहटों और मासूम शरारतों से होता था। ऐसा ही यह नगमा है दम भर जो उधर मुंह फेरे, उसी खूबसूरत एहसास का आईना है। गीत में रूठने मनाने की मिठास है, इश्क की चंचल अदा है, और दो दिलों के बीच चलती एक प्यारी सी गुफ्तगू का रंग भी। मुकेश साहब की सादगी भरी आवाज़ और लता मंगेशकर की मधुर तान इस गीत को ऐसा जादू बख्शी है कि आज भी सुनते ही सुनहरा दौर आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। यही वो दौर था, यही उस दौर के संगीत की असली कशिश थी। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं और फिल्म आवारा का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में। ये फिल्म आई थी 1951 में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतरे के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत में। और गीत मेरे मनमीत में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो हमारे दिल के, आपके दिल के बेहद करीब है। कहते हैं जब दो दिल एक दूसरे के करीब आते हैं तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनता, जैसे दो सितारे अपनी रोशनी से पूरी फिजा को जगमगा देते हों। मोहब्बत का यही दिलनशी एहसास अगला ये नगमा बता रहा है। बरसों से इश्क की महफिल की ये शान भी बना हुआ है, हिंदी सिनेमा के संगीत की महफिल की ये शान भी बना हुआ है ये नगमा। ये गीत सिर्फ दो प्रेमियों की मुलाकात का बयान नहीं बल्कि उस एहसास का जश्न है जब दो रूहें एक दूसरे में अपना अक्स तलाश लेती हैं। शकील बदायूनी साहब की शायरी में नज़ाकत है, लफ्ज़ों में मिठास है और नौशाद साहब के सुरों में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खुशबू साफ महसूस होती है इस गीत में। और यह नगमा है 1960 की एक शानदार फिल्म कोहिनूर से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की।

0: फिल्म कोहिनूर के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए गीत मेरे मनमीत से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आपके साथ रहेंगी मंजू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। बैठक में गृह मंत्रालय ने शून्य कोयला लीकेज हासिल करने, देश के कोयला संसाधनों से अवैध रूप से कोयला निकालने और चोरी तथा संगठित डकैती पर अंकुश लगाने के लिए लक्षित और समयबद्ध उपायों के निर्देश दिए। सरकार देश भर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में कल सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने आज

है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन से अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज पिछले विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों का उल्लेख करते हैं, उन्हें और अच्छे से समझने के लिए, अपनी जानकारी उन विषयों के बारे में बढ़ाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है। इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी द्वारा उल्लेख किए गए उस विषय को, उन व्यक्तियों को, उन हस्तियों को हम और समझते हैं, उनके कार्य के बारे में हम और जानते हैं और इस तरह हम गहरे से जुड़ते हैं, अपनी जड़ों से अपनी संस्कृति को थोड़ा और अपनाते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय की एक ऐसी पहल का उल्लेख किया जो अनुकरणीय है, जो बेहद प्रेरित करती है। किस तरह से हमारी जो परंपरागत शैक्षणिक विधियां थी, उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्जीवित कर रहा है, उन्हें प्रचलित कर रहा है और किस तरह से हमारे युवाओं को एक ऐसा मार्ग दिखा रहा है जो जीवन में आगे बढ़ने में हमें लगातार तैयार करता रहेगा, हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय, शास्त्रार्थ की परंपरा और साथ ही आधुनिक भारत के जो बड़े बदलाव हैं उनका उल्लेख किया है।
3: साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
2: तो साथियों, सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय की सराहना की है। और आइए अब मैं आपका परिचय करवा रही हूँ हमारे विशेषज्ञों से, जिनके माध्यम से हम इस विषय के बारे में आज और जानेंगे। आज हमें समय दिया है, हमारे स्टूडियो में आए हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो
4: नमस्कार।
2: में हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा जी। आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, पूर्व में पीसीएस अधिकारी अपर जिला अधिकारी के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं इलाहाबाद से। प्रेम शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
5: धन्यवाद नीलम जी।
2: और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी। आप सहायक आचार्य हैं संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद नीलम जी।
2: मैं सबसे पहले श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी के उद्गार हमने यहाँ पर सुने, उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जो नए लगते हैं, लेकिन ये भी हमें पता है कि वो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा रहे हैं और हमें लगातार वो प्रेरित करते रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शास्त्रार्थ की जिस परंपरा का उल्लेख किया है वो असल में क्या है?
4: नीलम जी, इस विषय में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं
2: जी,
4: जिन्होंने अपने मन की बात में हमारी पारंपरिक शास्त्र विरासत की एक बहुत बड़ा सराहना की उन्होंने
2: जी।
4: भारत देश में हमेशा संवाद के लिए बहुत बड़ा स्थान रहा है। शास्त्रार्थ यानि संवाद
2: जी,
4: वाद कथा इसको हम बोलते हैं। जब किसी विषय पर निर्णय करना हो, अनेक मत हो, उन सारे मतों को सामने रखते हुए एक मध्यस्थ को बीच में रख के शास्त्रार्थ करते हैं, अपने अपने मत को सब रखते हैं, उसके बाद जो संवाद के बाद जो निर्णय होता है वो मध्यस्थ उस निर्णय को बताते हैं। तो इस व्यवस्था को हमने शास्त्रार्थ नाम दिया है
2: जी।
4: हमारी परंपरा में इसको वाक्यार्थ भी बोलते हैं, वादार्थ भी बोलते हैं और वाद कथा भी, संवाद भी, ये समानार्थक शब्द है। हमारी शास्त्रीय परंपरा में आज भी वो जीवित परंपरा है। आज भी व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेद भाष्य और द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत की परंपरा में द्वैत और अद्वैत के अनेक विमतियों को निश्चय करने के लिए शास्त्रार्थ आज भी करते हैं
2: जी।
4: लेकिन ये परंपरा केवल एक पारंपरिक व्यवस्था का अंग रहा है। इसको पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस शास्त्रार्थ परंपरा को उज्जीवित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को सराहना की है। उसके द्वारा उन्होंने इस व्यवस्था को पूरे राष्ट्र का एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था का अंग के रूप में उन्होंने स्वागत किया है, इसलिए मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है
2: जी। डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बदलते दौर में बहुत सारी नई चीजें हम अपने आसपास लगातार घटित होते हुए देख रहे हैं और युवाओं के जीवन का ये हिस्सा भी बनते जा रहे हैं, जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन साथ ही एक चुनौती ये भी है कि हम अगर अपने पांडुलिपियों की बात करते हैं, अगर हम अपने उपनिषदों, शास्त्रों और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण की बात करें, अपने वेदों की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि AI इसमें किसी तरह सहायक सिद्ध हो सकती है या ये एक चुनौती है जो हमारे इन प्राचीन जो संपदा है इसका ह्रास करेगी?
6: जी नीलम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया पांडुलिपि से संबंधित। देखिए, भारत की जो समृद्ध ज्ञान परंपरा है, जो हमारी बौद्धिक जो परंपरा है, उसका जो संरक्षण है वह तो पांडुलिपियों में संरक्षित है ही
2: जी।
6: हम जानते हैं कि जो पांडुलिपियां हैं केवल मात्र हाथ से लिखे हुए कोई पुराने दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की अक्षुण्ण जीवन स्मृति वो हैं और उनको ताम्रपत्र पर, भोजपत्र पर, वस्त्रों पर लिखा गया है और आज भी उनसे जो ज्ञान संपदा का जो विस्तार हो रहा है, निश्चित रूप से हम उसके द्वारा भावी पीढ़ियों को उस सुरक्षित ज्ञान के संवहन के लिए हम निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि किस प्रकार से इस ज्ञान परंपरा को और अधिक दृढ़ भूमिका दे सकती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो कि धुंधली हैं या जो क्षतिग्रस्त हैं, उन पांडुलिपियों की उच्च गुणवत्ता वाली जो डिजिटल रिस्टोरेशन की जो बात है वो आसानी से हो सकती है, जिसमें AI जो है इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक के द्वारा उन पांडुलिपियों को डिसाइफर कर सकता है और अनेक लिपियों में जैसे कि ब्राह्मी है, शारदा है, सिद्धम है या नंदीनागरी है या द्रविडियन भाषाओं में या द्रविडियन लिपियों में जो लिखी गई पांडुलिपियां हैं उनको डिसाइफर करके स्वचालित पहचान के द्वारा एक डिजिटल पाठ तैयार कर सकता है, जिससे कि लाखों पृष्ठों का जो है डिजिटलाइज वर्जन हमारे सम्मुख उपस्थित हो सकता है। तो इस दृष्टि से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो निश्चित रूप से पांडुलिपियों के संरक्षण, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और कैटलॉगिंग के लिए बहुत सहायक हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता में जो ज्ञान भारतम जैसा एक मिशन जो स्थापित हुआ है, निश्चित रूप से उसमें अभी लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स देश भर से जो हैं संग्रहित हुई हैं, और जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं या जो भाषा विज्ञान पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए एक अनुपम धरोहर है अनुसंधान के लिए। और इसी से देखिए हमारा नवाचार विस्तृत होगा और भारत की ज्ञान संपदा विश्व भर में प्रसारित होगी।
2: जी, तो इस तरह से AI सहायक है। जी,
6: निश्चित रूप से।
2: जी, मैं प्रेम शंकर जी आपसे अब जानना चाहूंगी, जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो विद्यालयों में हम सबका जुड़ाव तो रहा ही है, आरंभिक चरण में, अपनी शिक्षा के आरंभिक चरण में हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है वो आगे भी इसकी पढ़ाई जारी रखते हैं और कुछ सातवीं, आठवीं, नवीं कक्षा के बाद छोड़ देते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जब हम शास्त्रार्थ की बात करते हैं तो क्या ये केवल संस्कृत भाषा से जुड़ा है, और जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है इसमें क्या मूल अवधारणा रही है, जो प्राचीन साक्ष्य है, क्या इस बारे में कुछ मिलते हैं हमें?
5: असल में शास्त्रार्थ अपनी बहुत प्राचीन परंपरा का एक अंग रहा है हमारे।
2: जी,
5: जिसमें शास्त्र कहते हैं ऐसा ज्ञान जो कि प्रमाणित हो, जो कि ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में जिनका उल्लेख मिलता हो, वो ज्ञान। उस ज्ञान के कहीं अगर विरोधाभास होते हैं तो उसके संबंध में लोग अपना शास्त्रार्थ के माध्यम से अपना व्याख्यान उसमें प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि कुलपति जी ने थोड़ी पूर्व में बताया था, उसके बाद जो सर्वोत्तम निष्कर्ष होता है, सर्वोत्तम मत जो होता है या तर्क संपन्न जो होता है, उस पर एक निर्णय हो जाता है। ये शास्त्रीय परंपरा हमारी, शास्त्रार्थ की परंपरा, शास्त्रीय परंपरा ही है एक तरह से, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। और बल्कि कहना चाहिए कि ये, मैं तो ये मानता हूँ कि गांवों में जो पंचायत जो चला करती थी वो भी उस शास्त्रार्थ परंपरा का ही एक रूप है, क्योंकि उसमें अनेक लोग बैठते थे, कम से कम पांच तो बैठते ही थे, लेकिन पंचायत में पांच के अतिरिक्त ये नहीं था कि वो छठा व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो वो एक खुला मंच होता था गांव में भी, और अपनी अपनी बात रखते थे और सत्य के निर्णय पर सब एक मत होकर के पहुंच के उसको पूरा समाज उसको मान्यता देता था। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है, और जो आज भी हम लोकतंत्र के रूप में, प्रजातंत्र के रूप में, हम उसका आज भी पल्लवन और पुष्पन देख रहे हैं।
2: जी,
5: और ये शास्त्रार्थ सदैव जीवित रहेगा। और ये प्रधानमंत्री जी के जो मुख से निसृत हुआ है,
2: जी,
5: उसके आधार पर तो मैं समझता हूँ कि अब इसके विशेष रूप से ज्यादा बल दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों से इस संबंध में प्रार्थना की है कि वो भी AI और उसके माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय ने प्रयास किया है, उस तरह से अन्य विश्वविद्यालय भी उस तरह का अपना योगदान करें।
2: जी, यानी केवल भाषा से इसका संबंध नहीं है, शास्त्रार्थ का मतलब है किसी विषय के बारे में अपना मत रखना और जो सर्वोत्तम पद्धति है उसे स्वीकार करना।
5: जी,
2: मुझे याद आ रहा है कि जब हम कॉलेज में थे तब भी हमारे यहाँ अलग अलग अवसरों पर जब कॉम्पिटिशन्स होते थे, प्रतिस्पर्धाएं होती थी, तो डिबेट भी उसमें एक प्रतिस्पर्धा होती थी, और एक विषय के पक्ष में और विपक्ष में हम बोलते थे, फिर उसमें विजेता विद्यार्थी जो है उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि शायद इसी परंपरा को पल्लवित किया जा रहा था।
4: लेकिन उसमें एक जोड़ना चाहता हूँ, भारत में शास्त्रार्थ व्यवस्था में एक पद्धति विकसित की गई है।
2: जी।
4: आज जो केवल डिबेट होता है उसमें केवल पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष के रूप में तो अपनापन रखते हैं।
2: जी।
4: ये युक्ति के आधार पर निर्णय हो सकता है, लेकिन हमारी परंपरा में शास्त्रार्थ कैसे करना है, कैसे प्रस्तुति रखनी है, जैसे आज के कोर्ट में, न्यायालय में कोई पद्धति है, उसी तरह का प्राचीन पद्धति है, उसको शास्त्रार्थ पद्धति बोलते हैं। उस पद्धति में यदि किसी के मत हराना है, उसको हराना नहीं माना जाता था, उस मत के ऊपर उनको आक्षेप जितना करना है, कैसे करना है, प्रमाण क्या देना है, युक्ति क्या देनी है, युक्ति का बल कितना है, प्रमाण का बल कितना है, ये सारा निर्णय का अंग होता था। तो निर्णायक भी उसको ठीक से जानते थे, और जो पूर्व पक्ष के व्यक्ति, उत्तर पक्ष के व्यक्ति अपने मत को जब स्वीकार करते थे दूसरे मत को,
2: जी,
4: तो एक स्पर्धा नहीं थी।
2: जी।
4: ये सत्यान्वेषण का मार्ग था।
2: जी, यानी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसकी खोज सब मिलकर कर रहे हैं।
4: जी।
2: और इसमें मत भेद हो सकता था, मन भेद नहीं था, व्यक्ति का सम्मान जो है वो बना रहता था। जी, यहाँ सर मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का गाना मैं श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
4: संस्कृत के गाने मुझे बहुत पसंद है
2: जी।
4: वैसे हिंदी के गाना भी सुनते हैं, लेकिन मेरे विश्वविद्यालय के गाने में एक जो पद्य है बहुत सुंदर पद्य है, जो हमारे नवाचार को अपने आप में एक प्रतिबिंबित करता है। मुझे लगता है कि संस्कृत गानों को भी हमारे युवा लोग सुनना चाहिए। इस दृष्टि से एक इस गाने का इस भाग को मैं आपको उपहार के रूप में देना चाहता हूँ।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, हम ये अपने श्रोताओं को जरूर सुनवाएंगे।

0: तो इन मीठे से शब्दों के साथ ही जो गूढ़ अर्थ है इनका, उन्हें स्वीकार करने के साथ ही मैं एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं अपनी प्राचीन शास्त्रार्थ पद्धति की, और साथ ही जो नई तकनीक हमारी शिक्षा पद्धति में जुड़ी है उनकी बात भी हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि AI को हम अपना तो रहे हैं और हमारे युवा जो हैं उनका काम बहुत हद तक अब डिपेंड करता है AI पर, वो उसकी मदद लेते हैं अपने काम में, लेकिन एक ये चुनौती भी है कि हम अपनी क्रिएटिविटी ओरिजिनल थिंकिंग को कैसे बचाए रख सके, तो इसमें हमारे शिक्षा व्यवस्था क्या भूमिका निभा सकती है, हमारे विद्यालय क्या ऐसा कर सकते हैं, हमारा समाज ऐसा क्या कर सकता है कि हमारी रचनात्मकता जो है वो भी बची रहे और साथ ही नवाचार को लेकर हम आगे बढ़े।
1: देखिए, मानव की इस यात्रा में जब नई नई टेक्नोलॉजी आते हैं उसमें हम प्रवेश करते हैं, हमेशा एक चैलेंज रहा है। जैसे हमारे हाथों से जो करते थे वो यंत्र बन गए, तो ये भी चैलेंज रहा है
0: जी।
1: और जब हम पादचरण के द्वारा यात्रा करते थे, वाहन आ गए हमारे, उसके बारे में भी चर्चा है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ मानव यात्रा का हमेशा एक संघर्ष दिखता है, लेकिन वो संघर्ष नहीं है, मानव कौशलता का विकास का एक भाग है वो। हम टेक्नोलॉजी छोड़ भी नहीं सकते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ संघर्ष भी नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि AI टेक्नोलॉजी में प्रवेश करने के बाद मानव अपने आप को दूसरे ढंग से अपना कौशल का विस्तार करेगा
0: जी,
1: बुद्धि का विस्तार करेगा। लगता है शुरुआत में ये हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन जिसके साथ हम स्नेह करेंगे उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे, साथ ही हम अपनापन को मानव ने कभी छोड़ा नहीं आज तक। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में AI हमारे साथ रहेगी। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे आ गई, क्या आज भी मानव निर्मित सुंदर कलाकृतियों के बारे में कोई प्रश्न है क्या? डिजिटल टेक्नोलॉजी में उसका एक नयापन मिला है
0: जी।
1: आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कई चित्रकार अच्छे अच्छे नए चित्र दिखते हैं। अब टेक्नोलॉजी आया है साउंड का, अकोस्टिक का, उसके साथ अच्छे गाने भी आए हैं
0: जी।
1: और इसलिए मुझे लगता है कि कभी भी मानव का जो कलात्मकता है और प्रतिभा है उसके लिए सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अनुकूल बनेंगे, कभी विरोधी नहीं बनेंगे
0: जी।
1: लेकिन एक जो है उसको सीखने का और उसके साथ जीने का मन करना होगा और उसका संयम के

0: साथ उपयोग करना, क्योंकि मैं मानता हूँ एआई टेक्नोलॉजी जैसे कि अभी हमारे सामने जो आया है बहुत ही पुराने टेक्नोलॉजियों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं इसको ब्रह्म राक्षस मानता हूँ। यदि ब्रह्म राक्षस को आप अपने वश में रखें
1: जी तो
0: बहुत ही काम करेगा वो आपके लिए, लेकिन ब्रह्म राक्षस यदि आपका वश में नहीं है आपको खा जाएगा,
1: जी
0: तो सोचना पड़ेगा उसके उपयोग करने से पहले। तो इस दृष्टि से मुझे आज ये वरदान है, हम ऐसा युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया में किसी सभ्यता ने इसको देखा नहीं था। वंडरफुल, इसके साथ करना चाहिए।
1: और बहुत ही प्यारी बात आपने कही कि हम जिससे प्रेम करेंगे उसके साथ एक सामंजस्य भी होगा, उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे और हमारी बुद्धि का विस्तार होगा इससे, अगर हम चाहें तो। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक शुरू करने की पहल की है, तो आप शिक्षा व्यवस्था में इसे कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मानते हैं, ऐसा क्यों किया गया है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको खासकर उल्लेख किया है, इसलिए नहीं है कि बीटेक भारत में पहली बार शुरू हो रहा है।
1: जी
0: बीटेक पाठ्यक्रम भारत में कई संस्थानों में है,
1: जी
0: लेकिन उसके पीछे रहा हुआ उद्देश्य के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने एक उल्लेख किया है।
1: जी
0: वो उल्लेख ये है कि तकनीकी व्यवस्था को हमारी भाषाओं के साथ, हमारी प्राचीन ज्ञान धरोहर के साथ जोड़ने का प्रयास, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: बीटेक एआई और डेटा साइंस ये पाठ्यक्रम ही क्रांतिकारी नहीं है अपने आप में, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी को हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ, संस्कृत के साथ जोड़ने का प्रयास पहली बार हो रहा है।
1: जी
0: ये कार्य कोई आईआईटी नहीं कर रहा है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है। पहली बार संस्कृत विश्वविद्यालय अपने पारंपरिक क्षेत्र से बाहर एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास, साथ ही भारतीय भाषाओं के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने का प्रयास जो कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य को देखा है।
1: जी
0: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस विशेषता को आपने देखा और उल्लेख किया, मन की बात के द्वारा पूरे दुनिया को इस विषय को पहुंचा दिया।
1: जी
0: ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बार बार माननीय प्रधानमंत्री उसको उल्लेख करते हैं, संस्कृत केवल भाषा मात्र नहीं है, एक ज्ञान की धारा है, उसको जीवन के सभी अंगों में सभी डिसिप्लिन के साथ जोड़ने का आवश्यकता है, उसको मानते हुए उसमें हमने एक प्रयास किया है। हमने आधुनिक तंत्र ज्ञान के साथ जोड़ा है इस कार्यक्रम के द्वारा, भारतीय विधि शास्त्र के साथ जोड़ा है, आयुर्वेद के साथ जोड़ा है और सिविल सर्विस स्टडीज के साथ जोड़ा है। तो कुल मिलाकर भारत के जितने भी हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में संस्कृत को जोड़ने का प्रयास केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है, उस दिशा में ये भी एक प्रयास है बीटेक कार्यक्रम, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी को केवल संस्कृत नहीं सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम में हम जोड़ना चाहते हैं। इसमें दोनों तरह के छात्रों को भाग लेना होगा, जिसमें संस्कृत और भारतीय भाषा जानते हो, साथ में टेक्नोलॉजी जानते हो। आने वाले दिनों में लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो संस्कृत और भारतीय भाषा आश्रित लार्ज लैंग्वेज मॉडल होंगे
1: जी।
0: उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने का बहुत बड़ा एक उद्यम हम जो शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पूरे शिक्षा मंत्रालय का समर्थन है, पूरे भारत सरकार का समर्थन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन है, और आपके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने इसको आगे बढ़ाया है।
1: जी, तो ये आने वाले कल की तैयारी है। जी डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम दीक्षांत समारोह अक्सर सुनते हैं और ऐसा लगता है कि ये विद्यालय विश्वविद्यालयों में अब केवल डिग्री वितरण समारोह है। मैं आपसे हमारी शिक्षा परंपरा, भारतीय शिक्षा परंपरा में दीक्षांत समारोह का वास्तविक स्वरूप क्या था, इसका महत्व क्या है, ये जानना चाहूंगी।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया नीलम जी आपने। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो कि इतनी समृद्ध है, विशाल है, विराट है, उसमें उपनिषद कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मनुष्य को अज्ञान से, भय से, अहंकार से और संकीर्णताओं से मुक्त करे। तो इसी की जो प्रबल भावना है वह हमारे दीक्षांत में हमें प्रकट होती है, क्योंकि भारतीय शिक्षण पद्धति में जो दीक्षांत समारोह है वह केवल शिक्षा समाप्ति का कोई विशेष उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति नए दायित्वों के अध्यायों का एक शुभारंभ है। इसीलिए हमारे गुरुकुलों में अध्ययन की समाप्ति नहीं होती है, बल्कि दीक्षा के पूर्ण होने से जो विद्यार्थियों में ज्ञान, चरित्र, अनुशासन, सेवा और जो लोकमंगल के जो संस्कार हैं उनका प्रतिष्ठापन किया जाता है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में जब विद्यार्थी गुरुकुलों में पढ़ते हैं

0: तो वो वेद सहित, चतुर्वेद सहित षडंग की वो विद्या को प्राप्त करते हैं। दर्शन शास्त्र में प्रवीण होते हैं, राजनीति हो चाहे शिल्प शास्त्र, उसमें प्रवीण होते हैं। और इन सभी परीक्षाओं में सफल होने के उपरांत वे समाज में जो प्रवेश करने की जो अनुमति है उसको गुरु
1: जी
0: से प्राप्त करते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो
1: जी
0: आश्रम प्रवेश की भी अनुमति इसमें मिलती है। और विशेष रूप से दीक्षांत समारोह के संदर्भ में जब ये आयोजन किया जाता है समावर्तन संस्कार के उपरांत, तो तैत्तिरीय उपनिषद की जो शिक्षावल्ली है वहां पर गुरु जो हैं वो शिष्य को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान्मा प्रमद, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो आप देखिए कि जो हमारे देश की इतनी विस्तृत और इतनी समग्र शिक्षा विकास की जो पद्धति रही है
1: जी
0: उसमें इतने सुंदर जो औपनिषदिक वचन है, जो वैदिक वचन है, वो किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को कितना संगठित करते हैं और हमें कितनी सामाजिक संरचना को कितना अधिक वो सामंजस्यपूर्ण या समरसतापूर्ण युक्त बनाते हैं।
1: जी
0: और मेरा मानना है कि जो भारतीय जो दीक्षांत की जो दृष्टि है उसमें शिक्षा का लक्ष्य केवल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है,
1: जी
0: यानी कि व्यक्तित्व परिवर्तन करना, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे कि वह व्यक्ति भी ऋषि, परमर्षि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि की कोटि में अपने आप को रखे। तो ये एक आदर्श युक्त जीवन शैली जो हमें शिक्षा से मिलती है उसी
1: जी
0: की ये एक मूल भावना हमें दीक्षांत समारोह के अवसर पर देखने को मिलती है। जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, उसमें भी इसी भारतीय दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास है उससे राष्ट्र निर्माण का और जीवन को जीने का एक महत्वपूर्ण जो है वो अवसर है।
1: जी महत्वपूर्ण अवसर है, और इसीलिए शायद इसमें दीक्षा शब्द जुड़ा है
0: जी
1: शिक्षा की बजाय,
0: जी
1: क्योंकि दीक्षा का अंत नहीं होता है। आप जितना गुरु का अनुसरण करते जाएंगे वो दीक्षा और गहरी होती जाएगी।
0: जी
1: जी बहुत अच्छा आपने इसका विवेचन किया है यहाँ पर। मैं प्रेमशंकर जी आपसे ये
0: जी
1: जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी ने और भी इसमें कई शब्द बोले हैं। प्रधानमंत्री जी ने पुरुष सूक्तम का जिक्र
0: जी
1: किया है, श्री सूक्तम है, श्री रुद्रम है, दुर्गा सूक्तम है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि थोड़ा विस्तार से आप हमें ये समझाएं।
2: धन्यवाद नीलम जी। प्रधानमंत्री जी ने जो सूक्तम का जो उल्लेख किया है
1: जी
2: वो हमारी प्राचीन जो वैदिक संपत्ति है,
1: जी
2: जो वेद हैं हमारे, जो मंत्र हैं, उनका उल्लेख करके, क्यों वही सूक्त हैं। सूक्त का अर्थ है जो उत्तम बात कही गई हो, वो है सूक्त।
1: जी
2: ये हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो किस कारण से, देखिए एक तो है वेद जिनको श्रुति कहा जाता है,
1: जी
2: वो कहीं लिखे नहीं गए थे, वो केवल स्मृति के आधार पर सुन सुन करके लोगों ने याद किए थे, वो किसी के द्वारा रचे नहीं गए थे, इसीलिए वो, और वो सब के सब क्या हैं, वो मंत्र हैं।
1: जी
2: और मंत्र क्या है, वो मंत्र हैं, वो छंद हैं, क्योंकि छंद भी जो है वेदों का एक अंग है। छंदा पादौ तु वेदस्य,
1: जी
2: छंद जो है वेद का जो है वो चरण है, उनके बिना ज्ञान नहीं चल सकता, इसीलिए ये छंद। और ये आश्चर्य की बात है कि हमारे वेद सबको मंत्र याद रहे, उसका कारण ही ये है कि वो छंदोबद्ध थे, छंदों में थे, और वो छंदों को याद रखना आसान होता है, और गद्य का याद, इसीलिए आप हमारे हिंदी के गीत जो हैं चूंकि वो छंदोबद्ध हैं
1: जी
2: इसलिए वो सबको हृदयंगम भी हो जाते हैं और सबको पसंद भी आते हैं, और इसीलिए इतना पुराना हमारा जो ये ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वो छंदोबद्ध होने के कारण ये आज तक हमें प्राप्त होता है। इनमें से ही ये मंत्र हैं
1: जी
2: जिनको कि श्री सूक्तम कहा गया है। ये श्री सूक्तम, ये श्री कहा गया लक्ष्मी जी के लिए, और पुरुष सूक्तम कहा गया नारायण, यानी लक्ष्मी और नारायण।
1: जी
2: तो हमारे यहाँ तीन देव की कल्पना की गई है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
1: जी
2: तो ये तीन जो वो हैं, तो तीन बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकता, तो इनके ये शक्ति रखते हैं, इनके साथ शक्ति जुड़ी हुई है, तो नारायण के साथ लक्ष्मी जी की शक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कहा भी गया तीनों परमात्मा एक ही है लेकिन वो तीन रूपों में कार्य करता है। तो वो कैसे, रजो जुषे जन्मने सत्वव्रतये सितौ प्रजानाम प्रलये तमस्प्रसे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः।
1: जी
2: यानी परमात्मा जो है त्रिगुण स्वरूप है, उसमें तीनों शक्तियां हैं, यानी जन्म सृष्टि करने की और पालन करने की और संहार करने की, वो शक्ति संपन्न होने के

0: ये सब करता है।
1: जी
0: तो ये श्री सूक्तम जो लक्ष्मी जी का सूत्र है और पुरुष सूक्तम जो है नारायण के सूत्र हैं, तो ये जो हैं ये प्रार्थना और स्तुतियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे
1: जी
0: ही रुद्र भगवान के जो हैं वो रुद्र सूक्तम है, देवी जो सूक्तम है वो
1: जी
0: देवी महात्म्य है।
1: जी
0: तो इस तरह से ये चूंकि मंत्र होने के कारण ये पठनीय हो रहते हैं और श्रवणीय भी रहते हैं और याद भी रहते हैं
1: जी
0: और ये फल भी देते हैं।
1: जी तो स्तुति का माध्यम है ये।
0: हाँ, स्तुति के माध्यम है, क्योंकि मंत्र हमारे जो वेद मंत्र हैं ये सब परमात्मा की स्तुति के, प्रार्थना ही ज्यादातर वेदों का मुख्य अंग रही है और मंत्रों का प्रमुख अंग प्रार्थना ही रही है, स्तुति ही रही है।
1: जी यानी हम आम भाषा में समझ सकते हैं कि पुरुष सूक्तम जो है वो विष्णु जी की आराधना का एक माध्यम है, श्री सूक्तम लक्ष्मी जी की जी, और श्री रुद्रम जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है शिव जी को समर्पित है, और दुर्गा सूक्तम ये हम देवी की आराधना
0: जी का
1: जी
0: स्वरूप है।
1: जी बहुत अच्छे से आपने हमें बताया। मैं श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, अब हम अक्सर सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये कहा जाता है कि भारतीय ज्ञान पद्धति भी और हमारे जो प्राचीन संस्कृति है वो भी विश्व को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है, और हम वैश्विक जो पद्धतियां हैं उन्हें समाहित भी करते रहे हैं अपनी संस्कृतियों में, और कुछ ना कुछ ऐसा है कि दुनिया हमें आश्चर्य से भी देखती है लेकिन प्रशंसा से भी देखती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कौन सा वैश्विक आकर्षण है कि भाषा, भौगोलिक दूरी और सांस्कृतिक भिन्नताओं की सीमाओं को भी सहजता से पार कर जाता है। क्यों दुनिया हमारी प्राचीन संस्कृति को इतना मानती है कि हमारी भाषा जो है वो आज विदेशों में पढ़ाई जा रही है, बहुत सारे देश हैं संस्कृत वहाँ पर एक विषय है, वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, और हमारी संस्कृति के बहुत सारे हिस्से, हमारे जीवन यापन के दिनचर्या की बहुत सारी जो पद्धतियाँ हैं वो भी उनके जीवन यापन का हिस्सा हैं।
2: नीलम जी, एक बहुत गहरा प्रश्न है ये।
1: जी
2: इसमें जैसे आपने कहा भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक आकर्षण का केंद्र रहा है, दुनिया में भारत की सभ्यता का विशेषता क्या है, वो यह है कि प्रकृति के साथ हमारा जीवन है, प्रकृति से दूर नहीं है हम, प्रकृति से विरुद्ध नहीं भी नहीं गए हैं। दूसरी बात, विश्व कल्याण के लिए सोचा गया है, भाव शुद्धि भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अंग रहा है, विश्व कल्याण प्रार्थना के साथ विश्व शांति के लिए। देखिए आज भी भारत किसी देश के विरोध में कभी भी आक्रमण नहीं किया है
1: जी,
2: यह इतिहास का भाग रहा है। इतिहास में भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है लेकिन भारत ने किसी देश के विरुद्ध में आक्रमण नहीं किया है। हमने हमेशा ये सोचा है कि पूरे वसुधैव भी हमारा कुटुंब है, परिवार में हम आक्रमण नहीं करते हैं, परिवार के प्रति हम एक बंधुत्व भाव रखते हैं। इस स्नेह भाव से हमने जिया है, प्रकृति के साथ जिया है, पूरे विश्व के सभी के साथ सोदर भाव से जिया है, मित्रता के साथ जिया है, और सभी के अच्छाइयों को हमने स्वागत किया है। आनो भद्रा कृतवयन्तु विश्वतः, दुनिया के सभी जगह से सभी दिशाओं से हम अच्छे विचारों को आचारों को स्वागत किया है, हमने हमेशा सीखा है
1: जी।
2: इसलिए दुनिया हमसे अपेक्षा करती है कि हमारे जीवन पद्धति को दुनिया ने भारतीय सभ्यता को एक आदर्श मानकर अपने आप ये विश्व गुरुत्व दिया है। मुझे लगता है कि यही विशेषताएं हैं, भारत की सभ्यता का विशेषताएं हैं। हमारी संस्कृति अलग नहीं है, हमारे जीवन से अलग नहीं है, हमारे जीवन ही एक सांस्कृतिक जीवन है
1: जी।
2: संस्कृति यानी प्रकृति से दूर जब होता है तो संस्कृति नहीं होती है, वो विकृति हो जाती है। आज भी भारतीय जीवन पद्धति यदि देखेंगे वो प्रकृति के साथ जुड़ा है। हमने भी कई देशों से कई विदेशों से आचरण व्यवहार को लिया है लेकिन आज भी हमारा 3000 साल के बाद भी हमारी सभ्यता का जो अनेक विशुद्ध आचरण बचते हैं इसका कारण है हमने उससे बहुत दूर नहीं गए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कारण है, कभी भी हम रिजिड नहीं रहे हैं, हम किसी मत पर, हमारा मत नहीं है, हम एक जीवन का धर्म लिया है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि संस्कृति का और एक भाग है संस्कृत। हमने ये भी माना है कि हमारी भाषा के द्वारा हम संस्कृति हमने रिटेन किया है
1: जी।
2: भाषा लुप्त, देखिए आज हमारी इतनी भाषाएं हैं लेकिन भारत एक रहा है। यूरोप में भाषाएं बदली है, संस्कृतियां बदली है, देश भी बदले हैं लेकिन भारत में इतनी भाषाओं के बावजूद, इतने आचरण के बावजूद, इतने मतों के बावजूद भारत एक रहा है। कारण क्योंकि यहाँ एक संस्कृति और एक विशुद्ध विचार जो विश्व कल्याण के हो, विश्व शांति के हो, तो यही बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।
1: जी, और हम बहुत ही गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि हमारी ये संस्कृति है जो सबसे पहले विश्व शांति की कामना करती है, और हम वो संस्कृति हैं जहाँ हमारे श्लोक जो हैं, हमारे वेद पुराण हमें वनस्पति और पूर्ण ब्रह्मांड की शांति की कामना करना भी सिखाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में ये शामिल है। तो बहुत अच्छे से आपने कहा कि हमारी जो संस्कृति है ये इसीलिए आकर्षक है क्योंकि इसमें सहज प्रवाह है और साथ ही विश्व शांति, विश्व कल्याण की कामना है। जी, यहाँ पर डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो रहा और मन की बात का जो हिस्सा हमने सुना, उसमें एक शब्द आया ब्रह्म कमल डोमिनिकाना, मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं।
3: जी निश्चित रूप से नीलम जी, प्रधानमंत्री जी ने जो ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के विषय में बात की है, वह स्पेनिश बोलने वाले लोगों का एक समूह है जो कि रिपब्लिकन डोमिनिकाना में है
1: जी।
3: और विशेष रूप से ये स्पेनिश बोलते हैं और ये भारतीय संस्कृति से इतने अधिक अभिभूत हैं और इतनी अधिक इन्होंने श्रद्धा दिखाई है भारतीय संस्कृति के प्रति, जो कि हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है। और देखिए, इसी कारण से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा जो है वो आज भी हमें जीवंत दिखाई देती है विदेशों में। और इस प्रकार जब एक ये छोटा सा दल जो कि ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के नाम से है, तो उन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो संपूर्ण मानवता की जो साझा विरासत है, उसको बहुत सुंदर प्रकार से पूरे विश्व में प्रख्यापित करने का एक महनीय कार्य किया है। और इनके संदर्भ में एक विशेष बात यह है कि ये जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का ये जो है अनुसरण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और शुद्ध मंत्रोच्चारण करते हैं, और मंत्र भी वैदिक मंत्रों का ये पाठ करते हैं, और विशेष रूप से दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य जैसे देवी स्तुति परक मंत्रों का ये पाठ करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत से दूर जो देश हैं जहां पर भारतीय संस्कृति बहुत देर में गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने अत्यंत ही भारत के प्रति सम्मान रखते हुए और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को साझा विरासत के रूप में मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का जो उन्होंने एक परिचय दिया है, निश्चित रूप से वो सीमाओं से परे जाकर भी भारत को विश्व में जोड़ने की जो एक अद्भुत क्षमता दिखाई है, उसके लिए ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ये वस्तुतः भारतीय जो कथाएं हैं जो कि मंत्रात्मक हैं, जो कि पौराणिक हैं, उनको मात्र ऐतिहासिक या पौराणिक संदर्भ में नहीं देखते हैं, बल्कि वो इसको एक जीवंत भारतीय दर्शन के रूप में अपनाते हैं। जैसे कि दुर्गा सूक्तम, जो कि हम जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध है और मार्कंडेय पुराण का एक अंग है और तैत्तिरीय आरण्यक में भी यह प्राप्त होता है, वहां पर विशेष रूप से ये बात उपस्थित होती है कि ये जो वास्तविक जो शत्रु हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और हिंसा हैं। ये अज्ञानात्मक, नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, इन्हीं को ही हमें इन सूक्तों के माध्यम से जो है समाप्त करना है और अपनी बाह्य जो है जगत में अपनी आंतरिक चेतना को प्रबल बनाना है और इन शत्रुओं पर जो हमें विजय प्राप्त करते हुए देवी की स्तुति के माध्यम से विवेक है, साहस है, करुणा है, आत्मबल है, धर्म की स्थापना करनी है। और इसी कारण से हम देखिए पूरे विश्व में ये कहने के लिए तत्पर होते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु है, आध्यात्मिक संदेश देने वाला एक देश है और शक्ति की उपासना करने वाला एक देश है। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो समय समय पर इस प्रकार के देश दुनिया में हो रहे भारतीय संस्कृति के प्रति कार्यों से हम सभी को अवगत कराते हैं
1: जी।
3: और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में जो देव उपासना है, देवी उपासना है, प्रकृति उपासना है, उसका परिचय हम सभी को विश्व भर में मिलता है
1: जी। और अगर हम देखें तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा वो रहा है, हमने घर परिवार में इस तरह की चीजें देखी हैं, ऐसी परंपराएं देखी हैं, हमारे पर्वों पर हम वृक्ष पूजन करते हैं, हमारे किसी ना किसी त्योहार से एक वृक्ष जुड़ा है, कभी वहां हमें दिया जलाना है, कभी जल अर्पित करना है, और प्राकृतिक उपादान जो हैं, चंद्र की पूजा हो रही है, सूर्य देव की पूजा हो रही है, तो शायद ये भी हमें प्रकृति के प्रति आभारी बनाए रखने, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, इसमें हम ये चीजें कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि वो हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि हम ये परंपराएं जो हैं वो अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हम जब जिक्र करते हैं आधुनिकता का और हमारे युवाओं के पास अगर हम देखें, तो एक सर ने कहा कि ब्रह्म राक्षस है हमारे पास में, कि बहुत सारी तकनीक है और ग्लोबल सिटीजन अब हम अपने आप को कहते हैं, हमारे पास तकनीक के माध्यम से सूचनाएं बहुत जल्दी पहुंचती हैं और बहुत सारे विकल्प भी हैं आगे बढ़ने के। ऐसे में आपको

0: क्या लगता है कि हमारे युवा कैसे हम उन्हें अपनी परंपराओं से जोड़े रख सकते हैं, कैसे हम उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धति की जानकारी तो दें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में भी जाकर पढ़ाई करें, वहां नौकरियां भी करें, हम चाहते हैं कि वो हमारी जीडीपी में एक अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, वो हमें फॉरेन करेंसी भी जो है वो देश में भेजें, लेकिन इन सब के साथ कैसे हम अपने बच्चों को अपने पर्वों का महत्व समझाएं, अपनी सनातन संस्कृति जो है उसकी वैज्ञानिकता हम समझाएं। आप संस्कृत के विद्वान हैं लेकिन विज्ञान के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी।
1: नीलम जी, बहुत अच्छा आपने इसके बारे में प्रश्न किया है। इसका मूल कारण ये है कि हमारे युवाओं को, आजकल के विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा से अवश्य जोड़ना होगा, क्योंकि ज्ञान का जो सर्वोत्तम पक्ष है वो संस्कृत में मौजूद है। संस्कृत ही हमारे जीवन को उस ब्रह्म तक पहुंचाने का एक साधन बनाती है। जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रध कश्चित् दुरम। इस भारत देश के उपनिषदकार ने ही ये सबसे पहले कहा कि दूसरे की चीज को देख करके लालच मत करो, तो दूसरे की प्रगति को देख करके लालच मत करो, है ना। और ये भी तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी जो हमारे पास जो बैठा हुआ है उसका भी ध्यान रखो कि उसके लिए भी त्याग के साथ साथ आप भोग करो, मतलब त्याग भी करो। तो त्याग हमारे संस्कृति में बहुत, त्याग का बहुत महत्व रहा है, त्याग और तपस्या का। अगर इन चीजों से जुड़ना है तो संस्कृत को अपनाना होगा, क्योंकि ये सारे अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, ये तो संस्कृति सिखाती है और कोई भाषा तो ये सिखाती नहीं है। तो अगर इसीलिए विश्व भी आज संस्कृत की शरण में जा रहा है, योग की शरण में जाता है। योग क्या है? ये एक दर्शन है, षट दर्शनों में से एक दर्शन है। तो हमारे ये दर्शन क्या है? ये छह दर्शन जो है ये सूक्त रूप में ज्ञान का एक माध्यम है
0: जी।
1: सूत्र दिए हुए हैं, सूक्त दिए हुए हैं, उनके माध्यम से योग दर्शन में कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त करें वो पूरा साधन दिया हुआ है। तो ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञान का सदुपयोग करने का, ये हमारा संस्कृत सिखाती है, हमारी भाषा सिखाती है, हमारा साहित्य सिखाता है। तो इससे संस्कृत से हम जुड़े रहेंगे। और संस्कृत में एक खूबी बहुत बड़ी है
0: जी,
1: कि ये संसार की ऐसी भाषा है संस्कृत जो कि सबसे अधिक वैज्ञानिक है, सबसे शुद्ध और उत्कृष्ट इसका व्याकरण है
0: जी,
1: और सर्वोत्तम इसकी लिपि है, और जो आप लिख रहे हैं वही आप पढ़ते हैं, उच्चारण भी बिल्कुल वही है, जैसे कोई भी एक नुक्ता भी इसमें व्यर्थ का नहीं होता है
0: जी।
1: अगर उसे हटा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो ये वास्तव में पूरी तरह से वैज्ञानिक और ईश्वर प्रदत्त कहना चाहिए ये भाषा है संस्कृत
0: जी।
1: तो संस्कृत से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारे भविष्य देश का और संसार का भी, संसार को भी जोड़ना पड़ेगा, संसार भी जुड़ रहा है, क्योंकि वो ज्ञान जो मानवता का जो ज्ञान है
0: जी,
1: वो पशुत्व से ऊपर उठने का ज्ञान है जिसमें मानव बन सके और देव बन सके
0: जी,
1: तो बिना संस्कृत के वो संभव नहीं है, क्योंकि वो हमारे उपनिषदों में और वेद मंत्रों में भी व्याख्यात है, और कहीं किसी पुस्तक को आप ढूंढ लीजिए कहीं वो चीज आपको नहीं मिलेगी
0: जी। यानी संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है, और सांस्कृतिक जागरण जो है उसका एक सूत्र हम कह सकते हैं जी। प्रोफेसर श्रीनिवास, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, हम जब सांस्कृतिक जागरण की बात कर रहे हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, जिसमें हर नागरिक को एक भूमिका निभानी है, ऐसे में हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के रूप में क्या भूमिका निभा सकते हैं, वो कैसे सहयोग कर सकते हैं इसमें?
2: देखिए नीलम जी, विकसित भारत का निर्माण केवल एक अंग के विकास से नहीं होगा
0: जी,
2: उसमें बौद्धिक विकास भी है, उसमें आर्थिक विकास भी है, उसमें व्यक्तित्व विकसन भी है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी आज की शिक्षा एक एकांग या एक मुखी विकास का बात करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं
0: जी,
2: वो संपूर्ण विकसित भारत का है। उसमें केवल शिक्षा से एक जॉब, जॉब से अर्थ, अर्थ से जीवन, ये नहीं है
0: जी।
2: सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। हमने एक मिसिंग पॉइंट आज के शिक्षा में हुई है, सुख का मूल क्या है? लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे अर्थ है, मनी है। मनी के मूल क्या है? जॉब है। जॉब के लिए क्या करना है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। एग्जाम के क्या करना है? तैयारी करनी है
0: जी।
2: तो हमारी शिक्षा क्या हो गई है? जॉब के लिए तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा जॉब करना है, जॉब से अर्थ मिलेगा, अर्थ से सुख मिलेगा, यहाँ बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं। उसमें महत्वपूर्ण यह है कि कौटिल्य ये कहता है कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। सुख का मूल धर्म है, समाज में धर्म जब रहेगा तभी सुख मिलता है, सबके लिए सुख मिलेगा, स्वार्थ नहीं है
0: जी,
2: सबके लिए सुख। उसके बाद धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ चाहिए, लेकिन केवल अर्थ से सुख नहीं मिलेगा, धर्म के द्वारा ही मिलेगा
0: जी।
2: तो आज दुनिया में ये मिसिंग लिंक को भारत को सिखाना है। इसका मतलब है विकसित भारत केवल अर्थ से विकसित भारत नहीं होगा, संसाधनों से विकसित भारत नहीं होगा, आध्यात्मिक समृद्ध और संपूर्ण भारत आत्मनिर्भर जब होगा तभी विकसित भारत होगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता भी है, समृद्धि भी है और आध्यात्मिकता भी है
0: जी।
2: तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तीनों का समावेश होना चाहिए। हम केवल ज्ञान की बात करते हैं और सीधा अर्थ से व्यवस्था से जुड़ते हैं, नहीं। आज हमें आध्यात्मिकता को हमारी भारतीय विरासत, भारतीय परंपरा के द्वारा आत्मनिर्भरता को भी सिखाना है
0: जी।
2: तो विश्वविद्यालयों का ये दायित्व है, तंत्र ज्ञान मात्र नहीं, साइंस मात्र नहीं, अपितु आध्यात्मिकता और भारतीय विद्या के आधार पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारित ज्ञान व्यवस्था, तद्वारा अर्थव्यवस्था
0: जी।
2: तो नॉलेज इकोनॉमी जब बोलते हैं, केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी नहीं है वो
0: जी।
2: वो आध्यात्मिकता के साथ, धर्म के साथ और साथ ही हमारे नागरिक दायित्व के साथ, हम जब भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़कर जब आत्मनिर्भर व्यवस्था निर्माण करेंगे तभी विकसित भारत होगा
0: जी।
2: तो ये सारे दायित्व शिक्षा पर है। शिक्षा यानी शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान यानी शिक्षक
0: जी।
2: चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, चाहे वो उच्च शिक्षा का शिक्षक हो, संशोधक हो, सबका दायित्व शिक्षक पर है, शिक्षा संस्थानों पर है। हमारा दायित्व निभाने के लिए आज के नई भारत के, विकसित भारत के लिए जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसको सम्यक रूप से समीचीन व्यवस्था के साथ हम यदि उसका अनुष्ठान करेंगे तब विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी भी होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा भी होगी
0: जी। यानी सब कुछ साथ लेकर हमें बढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो वो किसी एक क्षेत्र या एक अंग का विकास नहीं है, वो सर्वांगीण विकास है देश का। और इसमें हमारी शिक्षा पद्धति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और साथ ही हमारे युवा भी, हमारे छात्र भी। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि विदेशों में जो भारतीय बसते हैं वो भी, और जिन विदेशियों के हृदय में भारत बसता है वो भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमने बात की नालंदा विश्वविद्यालय की एक बहुत अच्छी पहल की, और साथ ही आधुनिक शिक्षा पद्धति में हो रहे बदलावों की, आधुनिक चुनौतियों की, लेकिन उनके साथ ही समाधानों की भी हमने बात की। इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे, जिनके माध्यम से हमने विषयों को और गहराई से समझा है। प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, आप माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमारे साथ इस कार्यक्रम में श्री प्रेम शंकर शर्मा रहे, जाने माने संस्कृत विद्वान, आप साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, पूर्व में PCS अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के रूप में आप इलाहाबाद से सेवानिवृत्त हुए, और आज इस कार्यक्रम में आपने हमसे साझा की संस्कृत भाषा की विशेषताएं, साथ ही ये भी कि किस प्रकार से हम अपने युवाओं को इनसे जोड़कर रखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
1: नीलम जी शुक्रिया।
0: हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: आपका भी हृदय से धन्यवाद।
0: आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और ये कहते हुए कि हम हमेशा याद रखें संस्कृत केवल भाषा नहीं, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का एक सूत्र है, ये हम याद रखें। मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ अब आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। ये विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री ने एक सरकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्यवाही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। 7 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई है और एक व्यक्ति के मरने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सेना और वायुसेना को बचाव और राहत कार्यों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उन्होंने अपने 4 मंत्रिमंडल सहयोगियों को ऊपरी असम का दौरा करने और हाल ही में आई बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 3 जिलों में बचाव और राहत कार्यों का जायजा लेने का निर्देश दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल

107.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 11 सेकेंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सदाबहार आवाज़ के साथ, यानी गीता दत्त की आवाज़ के साथ।

गीता दत्त की आवाज में फिल्म साहेब बीवी और गुलाम से सुन रहे थे आप ये गीत। संगीत था हेमंत कुमार का और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था अबरार अलवी ने और इस फिल्म को निर्मित किया था गुरुदत्त साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, मीना कुमारी, रहमान और वहीदा रहमान ने। ये फिल्म 1956 की बंगाली फिल्म की रीमेक थी जो आधारित थी विमल मित्रा के उपन्यास पर। और इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म का संगीत भी दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा गया। और अगला गीत आप तक पहुंच रहा है आशा जी, रफ़ी साहब और शमशाद बेगम की आवाज़ में, फिल्म CID से।

फिल्म का नाम सीआईडी और आवाज़ें थी शमशाद बेगम, आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की। संगीत उपिन अय्यर साहब का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म आई थी 1956 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था राज खोसला ने और निर्मित किया था गुरुदत्त ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद, शकीला, जॉनी वॉकर, के एन सिंह और वहीदा रहमान ने। इस फिल्म में देव साहब की भूमिका एक पुलिस इंस्पेक्टर की थी जो एक हत्या के मामले की जांच करता है। और अगला गीत आप तक, जगजीत कौर की आवाज़ में, फिल्म शगुन से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में।

रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म कोहिनूर से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। ये फिल्म आई थी 1960 में और इस फिल्म का निर्माण किया था वीएन सिन्हा ने, निर्देशन किया था एसयू सनी ने और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार, मीना कुमारी, लीला चिटनेस और कुमकुम ने। फिल्म का संगीत दिया था नौशाद साहब ने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म रही थी और 1960 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

मदर इंडिया फिल्म से सुना आपने ये गीत, लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में। संगीत नौशाद साहब का था और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म आई थी 1957 में और इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था महबूब खान ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार ने। ये फिल्म महबूब खान की ही फिल्म औरत का रीमेक थी और फिल्म मदर इंडिया एक गरीब महिला राधा की कहानी है जो बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए, जिंदगी से लड़ते हुए, जीवन की परिस्थितियों से लड़ते हुए, समाज से लड़ते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और भारतीय नारी की जो एक सशक्त परिभाषा है उसे स्थापित करती है। अगला गीत फिर से लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ में।

गीत सुहाने में आज के लिए बस इतना ही। 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के शंकरराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। यह विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मैट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर जिले के अमगुरी राजस्व सर्कल में बाढ़ से संबंधित एक मौत की सूचना मिली है, जिससे राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब तक 5 हो गई है। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। इस बीच शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बदलते हालात को देखते हुए असम सरकार ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से अनुरोध किया है कि जरूरत पड़ने पर निकासी और बचाव कार्यों में सहयोग के लिए वे तैयार हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 का मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में जारी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ ना सको, और ना ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 17 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज के साथ।

वैसे बताने वाले तो बहुत कुछ बता गए हैं, लेकिन सच कहूं, मोहब्बत को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए ये इंतज़ार है, किसी के लिए यादें हैं, तो किसी के लिए साथ चलना मोहब्बत कहा जा सकता है। खैर, मोहब्बत की परिभाषाएं तो चलती रहेंगी और बातों का ये सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अभी वक्त है अगला गीत सुनने का। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

आपके दिल की धुन इस वक्त क्या कह रही है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मेरा दिल तो एक ख्वाब बुनना चाहता है। चलेंगे आप मेरे साथ अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, मेरा दिमाग मेरा दिल कहीं नहीं होता, तेरा ख्याल कुछ ऐसा निखर के आता है, तेरा ख्याल कुछ ऐसे निखर के आता है कि तेरा विसाल भी इतना हसीन नहीं होता। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपके रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:38 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

कहने और सुनने की जो कश्मकश होती है ना, यही हमें इंसान बनाती है। और ये कश्मकश जब मोहब्बत से मिल जाती है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। कई बार मैं सोचती हूँ कि इस पूरी कायनात में सबसे मुश्किल काम शायद यही है, अपने दिल की बात को सही वक्त पर, सही इंसान पर, सही लफ्ज़ों में कह पाना। कई बार तो पूरी ज़िंदगी गुजार दी जाती है लेकिन समझ नहीं आता कि क्या ये सही इंसान है, क्या ये सही वक्त है, क्या ये सही लम्हा है। और इसी उधेड़ बुन में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वो इंसान शायद हमारी ज़िंदगी से हमसे छूट भी जाता है। और फिर हम कई बार जब हम सोचते हैं तो फिर लगता है कि ये रंग और नूर की बारात आखिर पेश किसे की जाए। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की तरह। वाकई साहिर साहब को उनके शब्द ही साहिर बनाते हैं। पता है जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हमारे पास सब कुछ होता है, कामयाबी होती है, नाम होता है, महफिलें होती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक ऐसा खलीपन होता है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी चमक भर नहीं पाती। साहिर साहब ने जो इस गीत में कहा है वो आज भी उतना ही सच है। हम अक्सर अपनी खुशियों की बारात सजाते हैं, लेकिन उस उदासी का क्या जो बार बार हमारी यादों से, हमारी स्मृतियों से हमें घेरती है। अगला गीत फिर से रफी साहब की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी सुरभि, मुझे यानी अपनी रात की हमसफर। मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के विश्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। यह विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का भी उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. हेमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा और कल्याण राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप 2026 का फुटबॉल का बहुचर्चित फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच चल रहा है। 90 मिनट के खेल के बाद दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। अब जीत के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जैकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित गुयाना में 133 यात्रियों और चालक दल को ले जा रही एक सरकारी नौका पलट गई। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 67 लोगों को बचा लिया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। गुयाना के सरकार की ओर से बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने बताया कि MV बारिमा नौका राजधानी जॉर्जटाउन से उत्तरी अटलांटिक तट के किनारे पोर्ट कैटुमा की ओर जा रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम है हमराही। चलिए आगाज करते हैं हमराही का। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन ये लब खामोश रह जाते हैं। कुछ मुलाकातें बस पल की होती हैं लेकिन उनकी यादें पूरी उम्र का सहारा बन जाती हैं। किसी का साथ, किसी की मुस्कान, उसकी मौजूदगी, यही तो वो एहसास है जिसे हम अपने दिल में संजोकर हमेशा रखना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में है, आया है और समय ठहर गया है, उसके साथ बिताया हर लम्हा खूबसूरत ख्वाब जैसा लगता है, तो चलिए आगाज करते हैं एक ऐसे गीत के साथ, उसी मासूम एहसास के साथ, उसी अनमोल पल के नाम के साथ। चलिए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो आपके दिल की गहराइयों को छू लेगा। फिल्म है वो कौन थी, आवाज है लता मंगेशकर की।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जब बात इश्क की, मोहब्बत की और प्यार की होती है, तब ऐसे में सबसे खूबसूरत तोहफा फूल होते हैं। जी हाँ, फूल सिर्फ खुशबू नहीं लाते, वे दिल की उन भावनाओं को भी साथ समेट लाते हैं जिन्हें अक्सर शब्द हम कह नहीं पाते। जब किसी अपने के लिए फूल भेजे जाते हैं तो उसमें प्यार, अपनापन, इंतज़ार तीनों महकते हैं। आइए सुनते हैं इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता हुआ ये सदाबहार गीत।

हमराही प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी खुशियाँ दे देती है जिसका इंतजार बरसों से होता है। जब दिल अपनी सबसे प्यारी मंजिल के करीब पहुँच जाए तो हर पल किसी जश्न से कम नहीं लगता। ऐसे ही मोहब्बत की खुशी और अपना पन लिए पेश है ये गीत।

हमराही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। हर प्यार की अपनी एक कहानी होती है, कभी फूलों की तरह महकती तो कभी परिंदों की तरह खुलकर गुनगुनाती हुई। कुछ किस्से तो इतने मासूम होते हैं कि वे पीढ़ियों तक मुस्कुराहट बनकर जिंदा रहते हैं। तो आइए सुनते हैं प्यार की एक ऐसी ही बहुत ही प्यारी खूबसूरत दास्ता बयां करता हुआ एक ऐसा ही गीत, एक था गुल और एक थी बुलबुल।

हमराही प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। वो नहीं भूलता कहाँ जाऊं, वो नहीं भूलता जहाँ जाऊं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं कहाँ जाऊं, वो नहीं भूलता मैं जहाँ जाऊं।

और इसी गीत के साथ हमराही का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। सरकार देशभर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा सर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा और कल्याण राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। उत्तरी इराक में एक ईरानी ड्रोन को नियंत्रित तरीके से नष्ट करने के दौरान मारे गए तीसरे अमरीकी सैनिक की मौत की खबर है। इससे पहले अमरीकी केंद्रीय कमान ने जॉर्डन में अज्ञात शवों का पता लगाने की बात कही थी, जहां एक अलग ईरानी हमले में 2 अमरीकी सैनिक मारे गए और 1 लापता था, लेकिन अब कुल मिलाकर 3 अमरीकी सैनिक मारे गए हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में स्पेन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर नया चैंपियन बन गया है। यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने विश्व कप के इतिहास में दूसरी बार यह खिताब जीता है। वह 16 साल के बाद फिर से चैंपियन बना है। फेरॉन टॉरेस ने विजयी गोल किया। अविजित रहने के मामले में स्पेन ने इटली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित गुयाना में 133 यात्रियों और चालक दल को ले जा रही एक सरकारी नौका पलट गई। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 67 लोगों को बचा लिया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जैकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government had yesterday convened an all-party meeting at Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr.

100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा नमस्कार। जब दिल सच्ची नीयत से दुआ करता है तो हर अर्जी उम्मीद की एक नई किरण बन जाती है। विश्वास, प्रेम और उम्मीद हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देती है। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो दिल की गहराइयों से निकलकर प्रार्थना और खूबसूरत एहसास को सुरों में पिरोता है।

अरुणिमा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। भक्ति वो शक्ति है जो मन को शांति, विश्वास और नई ऊर्जा से भर देती है। जब भी हम श्रद्धा के साथ ऊपर वाले का स्मरण करते हैं तो हर दिन एक नई शुरुआत और एक नया कदम, एक नया उत्साह बन जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ सुरभि, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अरुणिमा। देखा जाए तो ये जिंदगी हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है, कभी खुशी दे जाती है तो कभी चुनौती, लेकिन हर अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो चलिए उम्मीद, हौसले और सकारात्मक सोच से भर देने वाला गीत सुनते हैं।

जीवन की असली खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब हमारी मुस्कान किसी और के चेहरे की वजह बन जाए या हम किसी के काम आ जाए। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो लोग दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लें, वही जीवन सच्ची मायनों में सार्थक हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं इंसानियत और अपनत्व का संदेश देता हुआ ये गीत।

और इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफ़र यहीं तक। 5:10 पर भोर सुहानी में होगी हमारी आपकी एक बार फिर मुलाकात। अब सुरभि को दीजिए अनुमति, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल लोकसभा

की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्यों ने इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य प्रस्तावित कार्यों पर अपने विचार साझा किए। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, अर्थपूर्ण भागीदारी और उच्चतम संसदीय परंपराओं के अनुपालन के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और ना ही ऐसी कोई अनुमति मांगी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ये विधेयक आज से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध कोयला जब्त किया है। ये जब्ती पिछले 3 सप्ताह में कोयला क्षेत्रों में CISF के गहन अभियानों के दौरान हुई। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। सरकार देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता तंत्र नमस्ते योजना लागू कर रही है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य मशीनीकृत सफाई, कौशल विकास और कल्याणकारी उपायों के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई प्रक्रिया को समाप्त करना है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले दिनों तेज बारिश का अनुमान है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरान टेरोस ने विजयी गोल किया। स्पेन दूसरी बार यह खिताब जीता है। और इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। लंदन के लॉर्ड्स में कल हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 388 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम 7 विकेट के नुकसान पर 360 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी में कभी कोई अकेला नहीं होता। एक सच्चा साथ, एक भरोसे भरा हाथ और थोड़ी सी संवेदना अगर मिल जाए तो किसी की भी पूरी दुनिया बदल सकती है। इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम और आप एक दूसरे का सहारा बने। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं उम्मीद, अपनापन और हौसले का संदेश देते हुए इस भावपूर्ण गीत को सुनकर।

भोर सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। सफर चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हौसला नहीं छोड़ते। हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाती है और हर नई सुबह एक नई शुरुआत का संदेश देती है। तो चलिए आत्मविश्वास को थाम कर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा को देने वाला ये गीत हम और आप सुनते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की